सुन रहे हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत। आप मुझे आज्ञा दीजिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की। आपसे जल्द मुलाकात होगी। मैं अर्चना बिसारिया आपसे विदा लेती हूँ।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने टेलीफोन पर बातचीत की। कतर के रास लफान औद्योगिक क्षेत्र में हुई दुर्घटना में भारतीय नागरिकों की मृत्यु पर अमीर ने संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के लिए कतर का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी चर्चा की और क्षेत्र में शांति तथा स्थिरता के प्रयासों का समर्थन किया। भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के हालात पर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की है। भारत ने कहा है कि ये टिप्पणियां पाकिस्तान की नाकामियों को छिपाने और मानवाधिकारों के उल्लंघन से ध्यान भटकाने की कोशिश है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाताओं से कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में विरोध प्रदर्शन इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान वहां के लोगों का दशकों से आर्थिक शोषण, बुनियादी अधिकारों का हनन और प्रशासनिक दमन कर रहा है। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी प्रशासन ने निहत्ते नागरिकों के साथ बर्बर व्यवहार किया है। जरूरी सामान और दवाओं की आपूर्ति रोक दी गई है और इंटरनेट बंद है। खाड़ी क्षेत्र में जारी टकराव पर श्री जायसवाल ने बताया कि भारतीय ध्वज वाले 10 जहाज अब भी फारस की खाड़ी में हैं। उन्होंने कहा कि 17 जून को अमरीका और ईरान के बीच सहमति पत्र पर हस्ताक्षर होने के बाद 11 जहाज होर्मुज जलडमरू मध्य से भारत पहुंचे। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय ध्वज वाले बाकी जहाज भी जल्द ही जलडमरू मध्य को पार कर सकेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार अलनीनो के कारण मानसून के संभावित दुष्प्रभाव से निपटने में किसानों की मदद के लिए अग्रिम तैयारियां कर रही हैं। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौहान ने ये बात कही।
1: अलनीनो के कारण कमजोर मानसून रहने की जो संभावित स्थितियां हैं और जिसका प्रभाव अब दिखने भी लगा है, क्योंकि मानसून अभी काफी लेट चल रहा है, इसलिए ओवरऑल अभी तक 43% बरसात कम हुई है और आगे भी जो मौसम का अनुमान है कमजोर रहने की संभावना है। और इसका मतलब ये है कि हमारी खरीफ की फसल उस पर इसका असर पड़ सकता है और इसलिए बिना किसी देरी के हम काफी दिनों से इन परिस्थितियों से निपटने के लिए तैयारियां कर रहे थे। 315 जिले ऐसे होंगे जहां वर्षा कम रहने की संभावना।
0: लखनऊ में हाल ही में हुई आग की घटना के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य भर में कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सभी कोचिंग संस्थानों का सर्वे और अग्नि सुरक्षा ऑडिट जल्द से जल्द कराया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार आज बेंगलुरु में उत्तर प्रदेश ग्लोबल ग्रोथ डायलॉग 2026 के तहत निवेशक रोड शो का आयोजन करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। रोड शो में देश के प्रमुख उद्योगपति और निवेशक भाग लेंगे। कार्यक्रम में बुनियादी ढांचे, आईटी, ग्लोबल कैपेसिटी सेंटर और विदेशी निवेश से जुड़े विषयों पर चर्चा होगी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि जब तक ईरान समर्थित गुट आतंकी गतिविधियों में लिप्त है और हमले जारी रखे हुए हैं, तब तक पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल नहीं हो सकती। अबुधाबी में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि लेबनान में संघर्ष विराम को लेकर चर्चा ईरान के साथ चल रही वार्ता से अलग है। श्री रूबियो ने कहा कि उन्होंने अमरीका के उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ ओन से बात की है और अमरीकी अधिकारी लेबनान में पहल कर रहे हैं। श्री रूबियो ने कहा कि कोई भी कूटनीतिक सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्षेत्रीय सुरक्षा और ईरान समर्थित गुटों की गतिविधियों के मुद्दे पर कितनी प्रगति हो पाती है। पश्चिम एशिया में शांति बहाली को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में हाल ही में वार्ता हुई है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों तक असम, मेघालय, आंतरिक कर्नाटक, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में तेज बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, कोंकण, गोवा, महाराष्ट्र, पंजाब और उत्तराखंड में भी तेज हवा के साथ आज बारिश की संभावना जताई है। फीफा विश्व कप में पुर्तगाल ने बड़ी जीत हासिल की है। अमेरिका के ह्यूस्टन में खेले गए ग्रुप के मुकाबले में पुर्तगाल ने उज्बेकिस्तान को 5-0 से हरा दिया। स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने 2 गोल दागकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई। उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra.

0: Rainbow 101.9.
1: हेलो हेलो हेलो, हाय हैदराबाद, आदाब और नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त आरजे हिमांजलि, और आज का शो डेडिकेटेड है उस मौसम के नाम जो दिल को ठंडक और शहर को नई जिंदगी दे देता है। जी हाँ, मॉनसून। दोस्तों, हैदराबाद की बारिश का अपना खुद का ही स्वैग है। कभी हल्की फुल्की फुहार, कभी अचानक जोर की बारिश और फिर चाय की तलब। तो आज बात करेंगे हैदराबाद में मॉनसून के मजे, मस्त एक्टिविटीज और उन जगहों की जो बारिशों में और भी खूबसूरत लगती हैं। पर सबसे पहले आपके लिए मॉनसून स्पेशल एक गाना।

Hello, hello, once again. This is RJ Himanjali, and you're listening to FM Rainbow 101.9 FM and our show Namaste, Hello, Aadab is already in full swing. तो हम बात कर रहे थे हैदराबाद की बारिशों के बारे में. तो हैदराबाद की गर्मी के बाद जब पहली बारिश होती है ना, तो लगता है जैसे पूरा शहर एक लंबी छुट्टी पर निकल गया हो.

सड़कों के किनारे पेड़ और हरे भरे जो हो जाते हैं, हवा में मिट्टी की खुशबू घुल जाती है और हर किसी के हाथ में चाय का कप नजर आता है। अगर चाय का कप नजर ना आए तो चाय की ख्वाहिश तो जरूर होती है। और एक और बात है कि लड़कियों की लंबी लंबी जुल्फें भी नहीं सूखती हैं इस मॉनसून में, और ना ही हमारे कपड़े सूखते हैं, पर फिर भी वी लव हैदराबाद मॉनसून्स एंड हैदराबाद रेन्स। और अगर आप घर में बैठने वालों में से नहीं हैं तो बने रहिए हमारे शो पर, क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं हैदराबाद मॉनसून्स में एक्सप्लोर करने के लिए नई नई चीज़ें और फेमस जगहें। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड विद अस, द नेक्स्ट सॉन्ग फॉर यू।

राइट एंड वी आर बैक अगेन। आई एम योर आरजे हिमांजलि। तो हम बात कर रहे थे कि मानसून में कहाँ घूमें। तो चार मीनार की बारिश वाली शामें याद आती हैं। सोचिए हल्की बारिश, चमकती सड़कें और चार मीनार के आसपास की रोशनियाँ। मानसून में पुराने हैदराबाद का चार्म ही अलग होता है।

यहाँ गरम चाय, ईरानी चाय और उस्मानिया बिस्किट्स के साथ बारिश का मजा लीजिए। और हाँ, कुछ इंस्टाग्राम वर्दी फोटोज भी लीजिए, लेना मत भूलिएगा। और अगर यहाँ हमारे बीच कॉफी लवर्स मौजूद हैं तो उनके लिए मैं रेकमेंड करूंगी जुबली हिल्स, जहाँ न्यूमरस कैफेज प्रेजेंट हैं और आइसक्रीम पार्लर्स भी। सो गो अहेड एंड एन्जॉय द मानसून ऑफ हैदराबाद एंड द नेक्स्ट मानसून स्पेशल सॉन्ग अप फॉर यू।

जी वेलकम बैक। हाय हेलो एंड वंस अगेन आई होप आप सभी लोग बारिश और बारिश की बूंदों को एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, एक और जो हम हैदराबादियों की फेवरेट जगह है घूमने की, वो है हुसैन सागर और नेकलेस रोड। तो दोस्तों, बारिश के बाद हुसैन सागर के पास चलना एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ठंडी हवा, लेक का व्यू और बारिश की बूंदें, परफेक्ट कॉम्बिनेशन। शाम के वक्त फैमिली या फ्रेंड्स के साथ वॉक कीजिए, भुट्टा खाइए, यू नो बेस्ट, और मौसम का मज़ा लीजिए। और भुट्टे वाले भैया को बोलिएगा कि भैया ज़रा नींबू, नमक, मिर्ची एक्स्ट्रा लगा के दें। और जो हमारी नेकलेस रोड है, वहाँ पर एक लंबी वॉक तो बनती ही है। इट हैज़ बीन रीनेम्ड एज पीवी नरसिम्हा राव मार्ग एंड इट्स अ 3 किलोमीटर लॉन्ग बोलेवार्ड बॉर्डरिंग टैंक बन इन अ कर्व शेप लाइक अ नेक पीस। तो यस, आई होप आप सब मज़े लेंगे इन सारी जगहों की। उससे पहले प्लीज़ सुनिए आप हमारा नेक्स्ट सॉन्ग।

जी हाँ दोस्तों, वेलकम वेलकम, स्वागत है वंस अगेन आपका हमारे शो नमस्ते हेलो आदाब पर, ओनली ऑन FM रेनबो 101.9। आई एम योर होस्ट एंड RJ हिमांजलि, और आप सुन रहे थे चांद सिफारिश फ्रॉम द मूवी फना। काजल और आमिर खान पर फिल्माया गया ये गाना हमेशा दिल को छू जाता है और बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया गया है। तो हम ये भी बात कर रहे थे कि हैदराबाद में मॉनसून्स में कहाँ कहाँ घूमा जाए। तो जो हमारे बीच नेचर लवर्स हैं उनके लिए मॉनसून का मतलब है ग्रीनरी, और जिनको पार्क्स बहुत अच्छे लगते हैं तो KBR पार्क का नाम याद आता है। वो बारिशों में हर तरफ ताजगी ही ताजगी नजर आती है वहां पर, और आप मॉर्निंग वॉक्स के लिए जाएं, जॉगिंग के लिए जाएं, या सिर्फ नेचर को इंजॉय करने के लिए मॉनसून पर वहां जरूर जाएं। और अगर एक आधा मोर ना दिखा आपको तो मॉनसून नहीं आया समझो। तो जी हाँ दोस्तों, इंजॉय करते रहिए मॉनसून, चाय पीते रहिए, अपनी तबीयत सेहत का ख्याल रखें, और सुनते रहिए हमारे सॉन्ग लिस्ट जो आपके लिए क्यूरेटेड है।

जी हाँ दोस्तों, वंस अगेन आपका स्वागत है हमारे शो नमस्ते हेलो आदाब पर। और मैं हूँ आपकी आरजे और दोस्त हिमांजलि। तो हम बात कर रहे थे हैदराबाद की और हैदराबाद के मौसम की, मॉनसून्स की। तो अगर हैदराबाद की बात कहें तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द सिटी ऑफ लेक्स, और सबसे पॉपुलर नाम दिमाग में तो दुर्गम चेरुवु ही आता है। तो अगर आपको लेक्स और पीसफुल व्यूज पसंद हैं तो दुर्गम चेरुवु मॉनसून में मस्ट विजिट डेस्टिनेशन है। सुना है और कहा गया है कि किसी ज़माने में इट वॉज़ अ वेरी हिडन लेक, इट वॉज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रैवर्स, इसीलिए उसका नाम दुर्गम चेरुवु पड़ा। और एक ज़माने में ड्यूरिंग द कुतुबशाही डायनेस्टी इट ऑल्सो सर्व्ड एज अ वाइटल ड्रिंकिंग वाटर एंड इरीगेशन सोर्स फॉर द रेजिडेंट्स नियर बाय। तो अगर आपके यहाँ भी स्काइज क्लाउडी हो गए हैं, ब्रीज कूल हो गई है, तो लेक का रिफ्लेक्शन इंजॉय करने के लिए बिल्कुल वहीं पहुँच जाएं, दुर्गम चेरुवु पहुँच जाएं। और हाँ, उसी के साथ साथ हैंगिंग ब्रिज का भी मज़ा लें, वहाँ पर लाइटिंग का मज़ा लें और मॉनसून का लुत्फ उठाएं। तो सुनिए हमारा अगला गाना आपके लिए।

जी हाँ दोस्तों, इट इज 11:02 ऑन द स्टूडियो क्लॉक और हमने 1 घंटा हमारे शो का कंप्लीट कर लिया है. वी आर एंटरिंग इन टू द सेकेंड आवर ऑफ नमस्ते हेलो आदाब, एंड आई होप यू आर इंजॉइंग आवर प्ले लिस्ट फॉर टूडे. एंड हम बात कर रहे थे मानसून्स की, तो मानसून में अगर एक बार गोलकोंडा फोर्ट विजिट नहीं किया तो क्या ही किया. मानसून में गोलकुंडा फोर्ट का एक्सपीरियंस ही कमाल होता है. थोड़ी सी ट्रैकिंग, थोड़ी सी हिस्ट्री और ऊपर से बारिश के बाद हैदराबाद सिटी का पैनोरामिक व्यू. बस कंफर्टेबल शूज

पहनकर जाइएगा। और ऊपर जरूर चढ़ें, वहां से व्यू एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली अमेजिंग होता है। सो प्लीज प्लान योर वीकेंड ट्रिप्स इन दिस मॉनसून। जो हैदराबाद के हैं उन्हें तो पता ही होगा, और जो बाहर से टूरिस्ट आए हैं उनके लिए स्पेशल रिकमेंडेशंस हैं टू विजिट एंड व्यू आर ब्यूटिफुल सिटी। सो यस, स्टे ट्यून टू FM रेनबो 101.9 FM। द नेक्स्ट सॉन्ग अप फॉर यू गाइज।

जी हाँ दोस्तों, वेलकम बैक वेलकम बैक। यू आर लिसनिंग टू FM रेनबो 101.9, वेयर आर शो नमस्ते हेलो आदाब इज़ इन फुल स्विंग। तो हम बात कर रहे थे हैदराबाद के पॉपुलर मॉनसून स्पॉट्स की। तो हाउ कैन वी फॉरगेट रामोजी फिल्म सिटी, हम नहीं भूल सकते हैं। फ्रॉम द मैग्नानिमस सेट्स ऑफ बाहुबली टू द कलरफुल ब्रिज ऑफ द समर कैंप इन कुछ कुछ होता है, यू मस्ट इंजॉय इट ऑल ऑफ कोर्स विद अ रेन कोट एंड अम्ब्रेला हैंडी। तो जाइए और मज़े लीजिए और सुनिए हमारा अगला मॉनसून स्पेशल आपके लिए।

Hello, welcome back. This is FM Rainbow 101.9 FM and you're listening to our show Namaste, Hello, Adab. So it's 11:30 on the studio clock and we are well into our show. And we were discussing monsoons in Hyderabad. So monsoons ki ek aur mazedar cheez hoti hai ki road trip par nikal jaye. So agar aap road trip में इंटरेस्टेड है आपको पसंद है रोड ट्रिप्स तो व्हाई डोंट यू एक्सप्लोर अनंतगिरी हिल्स मॉनसून में अनंतगिरी हिल्स बिल्कुल ग्रीन कार्पेट की तरह लगती हैं फॉग क्लाउड्स और फ्रेश हवा के बीच ड्राइव करना एकदम रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस है कैंपिंग लवर्स विल बी इन फॉर अ ट्रीट क्योंकि वो एक वंडरफुल कैंपिंग साइट भी है और यू कैन गो एंजॉय विद योर फ्रेंड्स हैव अ ग्रेट टाइम एंजॉय द मॉनसूनस from the hills. The next song coming up for you very soon. Stay tuned.

जी हाँ दोस्तों, दिस वॉज आर स्पेशल मॉनसून सॉन्ग फॉर यू. एंड देर इज़ अनदर थिंग दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अबाउट टुडेज़ डे, दैट इज़ द 24th of June. टुडे इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ वेमेन इन डिप्लोमेसी, एंड इट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन June 24th टू सेलिब्रेट द कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ वेमेन टू इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एडवोकेट फॉर इक्वल जेंडर रिप्रेजेंटेशन इन डिप्लोमेटिक डिसीजन मेकिंग. जी हाँ, सेलिब्रेटिंग वेमेन ऑल ओवर एवरी डे, ईच डे. थैंक यू सो मच. एंड द नेक्स्ट सॉन्ग अप फॉर यू.

हाय एंड वेलकम बैक। एक बार फिर आपका स्वागत है FM रेनबो 101.9 पर, और आप सुन रहे हैं हमारा शो नमस्ते हेलो आदाब। स्टूडियो क्लॉक पर टाइम 12:08 है और हम आपके लिए लाने वाले हैं और भी अमेजिंग हिट्स। पर उससे पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि टूरिज्म की तो काफ़ी बातें हो गई, अब पेट पूजा की भी बातें हो ही जाए। तो मॉनसून में जो खाने पीने का मामला है वो ज़रा बदल ही जाता है, क्योंकि मूड का कोई हिसाब ही नहीं होता। तो मिर्ची भज्जी हो, ईरानी चाय हो, कटिंग चाय हो, पकौड़े हो, या गरम हलीम स्टाइल सूप्स और स्नैक्स हो, खाने की कोई लिमिट नहीं होती मॉनसून में। तो बाहर जाएं या अपने घर पे बनाएं और एंजॉय करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और सुने हमारा अगला गाना आपके लिए।

How are you all doing? And I hope you're enjoying the show for today. Welcome once again to FM Rainbow 101.9 FM, and you're listening to Namaste Hello Adab, and I'm your RJ Himanjali for today. तो आज बहुत सारी बातें हो गई मॉनसून पर, बहुत सारी टूरिस्ट प्लेसेस का डिस्कशन हो चुका है, तो अब थोड़ी सी सेफ्टी की बात भी कर लेते हैं. तो मस्ती के साथ थोड़ी सी जिम्मेदारी भी ज़रूरी है. तो वाटरलॉग्ड रोड से बचिए, बाइक और कार धीरे चलाएं, हेलमेट ज़रूर पहने, ज़रूरी हो तो अम्ब्रेला या रेनकोट साथ रखिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, प्लीज़ कचरा सड़क पर मत फेंकिए. कीप योर रोड्स एंड योर एनवायरनमेंट नीट एंड क्लीन. साफ हैदराबाद, खूबसूरत हैदराबाद. और सुनते रहिए हमारा अगला गाना, थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया में जाते हैं अब. तो सुनते हैं कुछ क्लासिक हिट्स.

0: हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून, आदाब मैडम जी।
0: हमारे साथ हमारे दूसरे कॉलर मौजूद हैं। सर, आप लाइन पर हैं?
1: जी।
0: ऑल राइट, शायद लाइन कट गई है।

0: डियर लिसनर्स, हमारे साथ हमारे दूसरे कॉलर मौजूद हैं। सर, अपना नाम बताइए।
1: मेरा नाम नरसिम्हा रेड्डी मैडम, प्रेमा की पेड़, राजेंद्र नगर।
0: जी बताइए सर,
1: बात
0: आपकी फेवरेट मॉनसून एक्टिविटी कौन सी है? आप क्या शेयर करना
1: एक्टिविटीज
0: चाहेंगे?
1: में तो बोला, पानी जब गिरता है ना मैडम, वो पानी का जो ऊपर से गिरा, नीचे से गिरा, उधर से गिरा, इधर से गिरा, कोई उसमें म्यूजिक का मजा ले तू मैडम। मैं पूछो,
0: अच्छा।
1: जो आवाज निकलती ना मैडम, पानी का जो बहते रहता है ऊपर से गिरता, कोई ज्यादा ऊंचा कम ऊंचे से गिरते रहते ना, एक एक में एक एक म्यूजिक का मजा ले तू मैडम। मैं
0: अरे वाह।
1: और पानी को बैठ के क्या, वो बालकनी में बैठ के देखते मजा लेता हूँ, और मेरे को बारिश में बिकने का बहुत शौक है मैडम मेरे का भी।
0: अच्छा।
1: हाँ, बहुत बिकते हुए मैं बोला, जब सुबह में जाता हूँ तो वाकई में भी वैसे ही चले जाता हूँ मैं, कि बगैर चट्टी का चले जाता हूँ मैडम। अगर चट्टी पकड़ लिया तो मैं हाथ नहीं हिला सकता, इसीलिए वॉकिंग बराबर नहीं होता, तो
0: अरे वाह
1: वो मजा लेता हूँ मैडम वॉकिंग में तो मैं,
0: जी।
1: बगैर छतरी का।
0: जी
1: और ये
0: जी
1: अगर थोड़ा बहुत बोलते हो, गरम गरम खाते हुए बैठ के देखते हुए मजा लेता हूँ मैडम, मैं तो इतना मैं कह सकता हूँ। थैंक
0: बढ़िया बढ़िया सर, थैंक यू सो
1: यू
0: मच,
1: मैडम।
0: आपने हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सर।
1: जी
0: हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है अभी। हेलो हेलो
2: मैडम नमस्ते।
0: हेलो।
2: हेलो मैडम नमस्ते।
0: जी नमस्ते मैम, आप नाम बताइए अपना। आप लाइव हैं, आप अपना नाम बताइए प्लीज़। आप ऑन एयर हैं।
2: मेरा नाम मुमताज है।
0: जी मैम बताइए, आपकी फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है मॉनसून में?
2: आप बारिश के बारे में पूछ रहे हैं ना?
0: जी
2: काफी
0: बिल्कुल।
2: बारिश में तो देखो, बारिश का मजा भी, हर मौसम का मजा अलग अलग होता है अपने अपने हिसाब से।
0: जी।
2: बारिश का मजा तो जैसा बारिश पड़ते रहती, उसके साथ कोई भी चीज तलन हो या मीठा या खारा हो, गरम गरम उसके साथ चाय या काफी बहुत अच्छी लगती। और फैमिली
0: बिल्कुल
2: के साथ गरम गरम मीठा
0: जी
2: या खारा, उसके साथ चाय या काफी बहुत मजा आ जाता
0: जी
2: बारिश पड़ते हो तो।
0: जी
2: बहुत
0: मैम
2: शुक्रिया मैडम, और शेर खान भाई को भी सलाम मेरे तरफ से बहुत।
0: जी। थैंक यू
2: और
0: मैम,
2: इस गाने की
0: आप
2: रिक्वेस्ट
0: आए
2: है
0: शेयर।
2: मैडम,

0: ठीक है
1: मैडम
0: यार, थैंक
1: जी।
0: यू। एक और कॉलर भी है हमारे साथ मौजूद। हेलो,
1: हेलो, गुड आफ्टरनून आदाब मैडम। जी,
0: गुड आफ्टरनून, कौन बोल रहे हैं?
1: शेर खान बोल रहा हूँ मैं।
0: जी सर, बताइए आपकी फेवरेट
1: जी
0: एक्टिविटी क्या है?
1: जी पहले सभी सुनने वाले भाई बहनों, दोस्तों को और आपको मेरा प्यार भरा सलाम आदाब, और अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह सभी को हर मौसम में हमेशा खुश रखे, आबाद रखे और सेहतमंद रखे, चाहे
0: जी
1: बारिश हो या गर्मी हो या सर्दी हो,
0: जी जी
1: सब
0: शुक्रिया
1: हमेशा सेहतमंद रहे।
0: जी।
1: और हमारे मुमताज बाजी को भी सलाम, हमारे मेजबिन बाजी को भी सलाम, जो पहला कॉल उनका ही था, मोहम्मद अफजल साहब हमारे दोस्त, उनको भी सलाम है।
0: जी
1: और मैं ब्लाइंड हूँ मैडम, मैं तो बारिश का या सर्दी गर्मी जो भी है, मतलब जो भी अपने को मिल जाता है बस शुक्र अदा करते हैं, और जो भी अपने सामने आ जाता है खाने को मिल जाता है तो वही शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन मुझे सर्दी और बारिश का मौसम बहुत पसंद आता है, क्योंकि
0: जी
1: जरा ठंडक और अच्छा लगता है, सुकून लगता है, तो मज़ा आता है। और बारिश में जो भी गरम गरम चीज़ हाथ में आ जाए तो बहुत अच्छी लजीज लगती है, अदरक वाली डिकाशन चाय और कोई खाने में गरम चीज़ जो भी मिल जाए, खाने
0: जी
1: जो मिला उसमें हर हाल में शुक्र अदा करने की कोशिश करता हूँ मैं तो।
0: जी जी जी
1: और
0: बिल्कुल
1: मैडम
0: सर।
1: एक गाने की रिक्वेस्ट है प्लीज,
0: जी।
1: लता मंगेशकर जी की आवाज़ में है, हम थे जिनके सहारे वो हुए ना हमारे,
0: जी बिल्कुल सर।
1: सफर फिल्म से है, अगर ये
0: जी
1: ना हो तो दूसरा है लता मंगेशकर की आवाज में, वो भूली दास्तां लो फिर याद आ गई, नजर के सामने घटा सी छा गई,
0: जी बिल्कुल बिल्कुल लेंगे सर,
1: ये
0: आप
1: दोनों में
0: हमारे लिए
1: से या
0: इंस्पिरेशन
1: दो
0: हैं।
1: भी
0: थैंक
1: सर्च
0: यू सो
1: करके आप
0: मच आप
1: लगा दिए
0: हमारे
1: तो
0: यहाँ
1: बहुत
0: कॉल
1: शुक्रिया,
0: करने के
1: और
0: लिए।
1: बहुत अच्छा शो कर रहे हैं आप, आपका भी
0: थैंक यू,
1: स्वागत है,
0: थैंक यू
1: बहुत
0: सर,
1: बहुत शुक्रिया मैडम।
0: थैंक यू। एंड द नेक्स्ट कॉलर,
1: हरि
0: हेलो।
1: ओम, हरि ओम, नमस्कार
0: जी सर, नमस्कार सर।
1: जी। मैं विलास पेनुरकर नल्ला कुंटा भाग्यनगर से बोल रहा हूँ।
0: जी जी सर,
1: आज
0: बताइए।
1: आपने विषय दिया है वर्षा ऋतु के बारे में,
0: जी
1: वर्षा में घूमना भीगना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
0: अच्छा
1: एक समय था जब मैं युवा था तो मैं और हमारे एक मित्र हैं, हम दोनों वर्षा में घूमते थे, लगभग आधा घंटा एक घंटा वर्षा चल रही है तो उसमें घूमने में बड़ा आनंद आता था। फिर
0: जी
1: उसके पश्चात घर आकर के स्वच्छ होकर के फिर कुछ खाना पीना होता था। तो मैं इस मत का हूं कि जिस समय धूप में, ठीक है धूप जाए वो अपने हाथ में तो है नहीं कि
0: जी
1: धूप कम गिरे या ज्यादा गिरे, वर्षा कम गिरे या ज्यादा गिरे, लेकिन जिस ऋतु में जो जैसा वातावरण है उसमें आपको अपने आप को ढालना है और उसमें अपने आप को आनंदित रखने का प्रयास करना है।
0: जी बिल्कुल, बहुत सही और अच्छी बात बताई सर आपने। थैंक यू
1: जी
0: सो मच, आपने फॉर
1: आभारी
0: कॉल,
1: हूँ।
0: थैंक यू। तो डियर लिसनर्स, सुनते हैं अगला गाना आज के लिए।

और कॉलर है हमारे साथ। हेलो हेलो, राइट डियर लिसनर्स, अगला गाना आपके लिए।

0: అబితా ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ ఎస్ఐఆర్ 2026 జూన్ 25 నుంచి జూలై 24 వరకు గణన దశ. ఈ దశలో బూత్ లెవెల్ ఆఫీసర్స్ ఇంటింటికి వచ్చి ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ ని ఇస్తారు. ఓటర్ల ఫామ్ ను పూర్తి చేసి తిరిగి సంబంధిత బిఎల్ఓకు అందజేయాలి. ఆన్లైన్ లో ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ సబ్మిట్ చేయాలనుకునే వారు voters.eci.gov.in వెబ్సైట్ లో నమోదు చేసుకోవచ్చు. గుర్తుంచుకోండి, ఓటర్ ఎన్యూమరేషన్ ఫామ్ పూర్తి చేసి తిరిగిచ్చిన వారి పేర్లు మాత్రమే ముసాయిదా జాబితాలో చేర్చబడతాయి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి, తెలంగాణ.
1: हेलो
2: जी, हमारे साथ एक और कॉलर मौजूद है. सर अपना नाम बताइए.
1: मेरा नाम रमणय्यम्मा.
2: जी जी सर.
1: पहले आयुष्मान भवा.
2: थैंक यू सर
1: जी को. हाँ, क्या तो ये मानसून में मुझे बहुत पसंद हो ये वेड़े पकौड़ी मिर्ची बज्जी.
2: अच्छा जी जी.
1: मिर्ची बज्जी कहते हैं मानसून बोलते. क्या कहते आफ्टरनून 10 o'clock 10:30 11 को है ना. हाँ. रागी संगठी मालूम.
2: हाँ हाँ सर जी जी.
1: रागी संगठी बैगन का पुलिस होता है. बैगन का पुलिस पल्ली चटनी.
2: हाँ,
1: घी घी डाल को मिला कर खाया तो कैसा होता है तो अच्छा पसंद होता है. अच्छा अच्छा अच्छा रहती है माँ.
2: जी जी सर जी सर.
1: ट्राई करके देखो.
2: जी जी बिल्कुल सर. थैंक यू सर फॉर कॉलिंग.
1: अच्छी माँ. अच्छी माँ.
2: थैंक यू. एक और कॉलर है हमारे साथ. हेलो हेलो
3: हेलो रविंदर.
2: जी जी सर अपना नाम बताइए.
3: जी मैं इमरान सर बात कर रहा हूँ, हैदराबाद तालागढ़.
2: जी जी सर, आज की टॉपिक सुनी आपने.
3: हाँ, क्या रखे हैं आप लोग.
2: आज की टॉपिक है कि मॉनसून में आपकी फेवरेट एक्टिविटी कौन सी है.
3: जी,
2: मॉनसून में बारिशों में आपकी फेवरेट एक्टिविटी.
3: बारिश में बोले तो देखिए पानी की शो है.
2: जी,
3: पानी पड़ना चाहिए.
2: जी,
3: पानी इतना भी नहीं पड़ना चाहिए, अच्छा पड़ना चाहिए. पानी भी पड़ना चाहिए, धूप भी आना चाहिए, सब आना चाहिए.
2: जी बिल्कुल.
3: पानी भी पड़ना, गर्मी भी होना, सर्दी भी होना, सब होना चाहिए.
2: जी जी
3: जी. पानी से तो सब कुछ है ना.
2: जी जी सर.
3: पानी पड़ा तो हर चीज आती है, पानी नहीं पड़ा तो कहाँ से आती.
2: जी जी सर. जी सर
3: जी. और आपसे एक गुजारिश है, एक भाई पसंद का गाना लगाइए ना.
2: जी बिल्कुल बिल्कुल सर, बताइए.
3: जी, साजर सन की नारे है.
2: जी,
3: फूल और सन बहारे है.
2: जी सर बिल्कुल बिल्कुल सर.
3: जी, विजय पत्ता है ये.
2: जी जी सर. जी सर,
3: अभी लगाना पन.
2: जी सर, थैंक यू सो मच, आपने फोन किया सर. थैंक यू. एक और कॉलर है. हेलो हेलो.
4: गुड आफ्टरनून मैडम.
2: जी सर.
4: गुड आफ्टरनून मैडम.
2: जी सर बोलिए.
4: के रमेश बात कर रहा हूँ मैंने.
2: जी जी जी सर.
4: टॉपिक बहुत अच्छा दिया मैडम.
2: जी,
4: बारिश में अच्छा भेजे हुआ गरम गरम मिर्ची, गरम गरम चाय.
2: जी,
4: ऐसा खाना बहुत इंटरेस्ट रहता है मैडम.
2: जी जी जी.
4: गरम गरम बिरयानी जो भी है गरम गरम खा लेना है.
2: जी जी सर,
4: बहुत अच्छा दिखता है.
2: जी,
4: रसमलाई रबड़ी ऐसी भी खाए थे, भी बहुत अच्छा दिखता है.
2: जी जी जी जी सर.
4: बारिश में ज्यादा बारिश भी नहीं आना मैडम, जितना आना उतना ही आना. ज्यादा है तो खेती बाड़ी को बहुत नुकसान हो जाता
2: है
4: मैडम.
2: हाँ वो तो है, सही सही है सर.
4: बहुत नुकसान हो जाता है, जितना आना उतना ही आना. ज्यादा नहीं आना, कम नहीं आना, बरोबर आना. पीने को पानी को कम नहीं होना और बोरिंग के पानी की भी कम नहीं होना. बहुत अच्छा रहना बोल के भगवान की प्रार्थना करते हैं मैडम. हम के रमेश उस्मानगंज.
2: बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग. एक और कॉलर है हमारे साथ. हेलो हेलो हेलो.
5: राधे राधे.
2: जी सर, राधे राधे. हेलो
5: हेलो.
2: जी सर जी सर, बताइए अपना नाम बताइए और आज का टॉपिक.
5: मेरा नाम मुरली है.
2: जी सर,
5: कैसे है.
2: जी मैं ठीक हूँ सर.
5: आपका नाम अंजलि या उससे पहले क्या है आपका.
2: जी
5: नाम?
2: जी हिमांजलि सर.
5: हिमांजलि.
2: जी
5: अच्छा अच्छा है नाम.
2: जी, आज की टॉपिक के बारे में बताइए सर.
5: बता देता हूँ. आपका शो एक बार आप रिकॉर्ड करके सुन लीजिए यार. सबसे भी आपका टोन बहुत अच्छा है.
2: जी
5: आगे बढ़ेंगे आप इस लाइन में.
2: जी थैंक यू सर.
5: बेस्ट बेस्ट बेस्ट विशेस फॉर दैट.
2: थैंक यू सर.
5: अच्छा बारिश में क्या है अंजलि?

हेलो डियर लिसनर्स, आई होप आप हमारी प्लेलिस्ट इंजॉय कर रहे होंगे। हम ऑलमोस्ट हमारे शो के अंत पर हैं और दूसरी आरजे वेट भी कर रही हैं आपका। तो आई होप यू हैड अ ग्रेट टाइम। और एक आखिरी गाना आपके लिए, और होपफुली इन द फ्यूचर मच मोर इंटरेस्टिंग प्लेलिस्ट फॉर यू। सो स्टे ट्यून्ड विद अस ऑन FM रेनबो 101.9।

0: FM Rainbow 101.9.
1: ये आकाशवाणी हैदराबाद है। स्टूडियोज की घड़ी में 9:30 हुआ चाहते हैं। अब आप सुनेंगे उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: மாட்டைன.
1: प्रोग्राम नरम में आप सभी का इस्तकबाल है। सामाइन, नरम की आज की ये खूबसूरत बज़्म सजाए हम बिल्कुल तैयार हैं आपके हिस के लिए, आपको कुछ मालूमाती बातें फराहम करने के लिए। जी हाँ सामाइन, यही हमारी कोशिश हर बार रहती है, इसीलिए तो हम आपके इंतज़ार के बिल्कुल ऐन मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर रहते हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं आज की बज़्म का। नरंग की आज की बज़्म के प्रोग्राम्स के जो तफसीलात हैं वो मुलाहजा करें। सबसे पहले आप सुनेंगे हरफ़े ताबिंदा, पेशकश रहेगी मोहम्मद उसामा की। फिर आप सुनेंगे मत सहल हमें जानो सिलसिले के तहत तकरीर, मशहूर शायर जोश मलियाबादी की शायरी में इनकलाबी पहलू पर। तहरीर और पेशकश रहेगी नरजिस गुलनार की। और फिर इस प्रोग्राम के बाद आप सुनेंगे हमारा और आपका पसंदीदा प्रोग्राम जो हर शाम आपकी समातों को मसरूर करता है। जी हाँ, मेरी मुराद है प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जैसे। इस प्रोग्राम के बाद हमारे बज़्म की आखिरी पेशकश जो रहेगी वो रहेगी पयामे शब। इस तरह आज के प्रोग्राम्स की ये तफसीलात रहें। तो आइए आगाज़ पर समात करते हैं हरफ़े ताबिंदा, तहरीर और पेशकश है मोहम्मद उसामा साहब की।
2: कहते हैं इंसान की पहचान उसके अखलाक से होती है। अच्छा अखलाक लोगों को न सिर्फ मुतासिर करता है बल्कि दिलों में मोहब्बत पैदा करने में भी अहम रोल अदा करता है। आज के इस तेज़ रफ्तार दौर में जहां लोग एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं, बेहतरीन अखलाक ही वो रोशनी है जो अंधेरों में उम्मीद की शमा रोशन कर सकती है। दोस्तों, अखलाक का पहला सबक ईमानदारी है। आजकल हम सब के पास वक्त नहीं है, लेकिन दूसरों के दुख में हिस्सादार बनने का वक्त ज़रूर निकालें। एक मुस्कुराहट, एक अच्छी बात और एक मदद का हाथ, ये छोटी सी चीज़ें बड़े बड़े ज़ख्म भर देती हैं। बकौल शायर, न सुनो गर बुरा कहे कोई, न कहो गर बुरा करे कोई, रोक लो गर गलत चले कोई, बख्श दो गर खता करे कोई। माफ़ करना सबसे बड़ा अखलाक है, यह दिल को हल्का करता है और दूसरों के दिल भी जीत लेता है। अखलाक दरअसल इंसान के अंदर की वो खूबसूरत कैफियत है जो उसके रवैये, गुफ्तगू और बर्ताव में झलकती है। एक इंसान की असल पहचान उसके लिबास या दौलत से नहीं बल्कि उसके अखलाक से होती है। यही वजह है कि दुनिया में हमेशा वही लोग याद रखे जाते हैं जिन्होंने अपने हुस्न अखलाक से दिल जीते। हर मज़हब में अखलाक को बहुत बुलंद मकाम हासिल है। अच्छा इंसान बनने के लिए अच्छा अखलाक इख्तियार करना ज़रूरी है। अच्छे अखलाक का मतलब सिर्फ नर्म गुफ्तगू नहीं बल्कि सब्र, बर्दाश्त, सच्चाई, दयानतदारी और दूसरों के साथ हुस्न सलूक भी है। अल्ताफ़ हुसैन हाली ने कहा है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। वाकई अगर इंसान के अंदर अखलाक की रोशनी ना हो तो उसकी ज़िंदगी अंधेरों में गुम हो जाती है। सामईन, हम अपने गिर्द नज़र डालें तो हमें अंदाज़ा होगा कि आज माशरे में बहुत सी खराबियां सिर्फ इसलिए पैदा हो रही हैं क्योंकि हमने अखलाक को नज़रअंदाज कर दिया है। छोटी छोटी बातों पर झगड़े, बेसब्री, बदतमीज़ी और दूसरों की हक तलफ़ी, ये सब इस बात की अलामत हैं कि हम अखलाक कदरों से दूर होते जा रहे हैं। बकौल शायर, हम लोग तो अखलाक भी रखाए हैं साहिल, रद्दी के उसी ढेर में आदाब पड़े हैं। बेहतरीन अखलाक न सिर्फ फ़र्द की ज़िंदगी को संवारता है बल्कि पूरे माशरे को खूबसूरत बनाता है। अगर हम सब अपने रवैयों में नरमी, मोहब्बत और एहतराम पैदा कर लें तो हमारा माशरा अमन और सुकून का गहवारा बन सकता है। हमें चाहिए कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में छोटी छोटी बातों से आगाज़ करें।

दोस्तों हम बिल्कुल वादे के मुताबिक हाजिर हो गए हैं प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में। जी हाँ, आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का और आज के प्रोग्राम में हम आपको सुनाएंगे कुछ प्यार भरे नगमे जो कि आपको पसंद ज़रूर आएंगे और साथ में हम करेंगे कुछ प्यार भरी मीठी मीठी बातें। जी हाँ, तो जब मौसम इस कदर खूबसूरत होता है और प्रोग्राम भी इतना दिलचस्प होता है और फिर साथ में हमारे जो सामईन हैं उनकी जो दिलचस्पी है वो पूरी तरह हम पर मरकूज होती है, तो क्यों ना कुछ अच्छे गीत सुने जाएं। जी हाँ, हर दिन हर शाम की तरह आज भी कुछ प्यार भरे गीतों की सौगात लिए हम बिल्कुल हाजिर हैं। तो चलिए अपने दिलों को थामे रखिए। मन में प्यार जब जागता है तो मन में लड्डू फूटने लगते हैं, खुशी होती है और खुशी का इजहार हम अलग अलग तरीके से करते हैं। और आज की खुशी तो दोबाला ज़रूर हो जाएगी क्योंकि आज मौसम ही बड़ा सुहाना है। दोस्तों मैं कहूँगी कि मौसम तो सभी अच्छे होते हैं लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो दिलों के तार छिड़ जाते हैं और एक अजीब सा सुकून मैसर होता है दिलों को, तबीयत को। और बारिश की हल्की हल्की बूंदें हमारी ज़िंदगी में कुछ नए ऐसे पैगामात लेकर आते हैं जिससे दिल की ज़मीन सरसब्ज़ शादाब हो जाती है। तो यूं ही सरसब्ज रखिए अपने दिलों की ज़मीन को क्योंकि बरसात की शुरुआत है। मौसम बहुत ही खूबसूरत हुआ है और उम्मीद रखते हैं कि हमको इस बरसात के दौरान यानी कि इस मौसम के दौरान अच्छी बारिश मिलेगी जो कि हमारे लिए नफ़े वाली रहेगी, फ़ायदेमंद रहेगी और इससे हमारे माशरे का, हमारे मुल्क का कुछ नुकसान नहीं होगा। यही उम्मीदें, यही ख्वाहिशें रखकर हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि मौसम बहुत प्यारा है, वक्त भी बहुत प्यारा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे दिल में मोर नाचने लगा है। तो चलिए जिस तरह मौसम की खुशगवारी को देखकर मोर अपने पर फैलाता है और रक्स करना शुरू कर देता है, इसी तरह आप भी इस मदमस्त मौसम में आप ही बहक जाइए और इस गीत के साथ आप भी थिरकने के लिए हो जाइए तैयार। सुनते रहिए आपका हमारा पसंदीदा प्रोग्राम नैरंग और नैरंग में खुसूसी पेशकश गीत सुरीले गाता जा।

जी दोस्तों, इस खूबसूरत मौसम में, खूबसूरत प्रोग्राम में आपने सुना एक बहुत ही खूबसूरत गीत। ये गीत हमने आपको सुनाया था फिल्म हम साथ साथ हैं से। बहुत ही मशहूर रहा ये गीत और इसमें कई स्टार्स, मल्टी स्टार ये फिल्म थी और इस ये गीत को भी स्पेशली ख़ास तौर पर कई अदाकार और अदाकारों पे फिल्माया गया। वाकई में बेहतरीन गीत था। और चलिए इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत ही प्यारा सा नगमा, एक ऐसा है ये गीत के हर दौर में, जब से हमने ये गाना सुना है तब से, जब कभी भी मौसम बदलता है, रुत सुहानी होती है या बारिश शुरू होती है, मौसम में जब किसी तरह की रंगीनी पैदा होती है, मौसम जब आशिकाना होने लगता है, तो ये गीत सभी के लबों पर आ ही जाता है। जी हाँ दोस्तों, मेरी मुराद है हमारे प्रोग्राम का अगले गीत से, जो कि मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, फिल्म पाकीज़ा का ये गीत मैं आपको सुनाने चाहूँगी। बहुत ही प्यारा गीत। और आप जब इस गीत को सुनेंगे तो मैं ये बड़े ही दावे के साथ कहूँगी कि आप इस गीत की खूबसूरती में खो जाएंगे ज़रूर। सुनते रहिए आपके पसंदीदा प्रोग्राम, आपकी पसंदीदा नशिस्त में, पसंदीदा बस में, जिसका नाम है नए रंग।

दोस्तों, मौसम जब आशिकाना होता है तो आशिकों को एक दूसरे की यादें बड़ी सताने लगती हैं। हम जिस किसी भी चीज़ को पसंद करते हैं, जिस चीज़ के हम शायक होते हैं, या जो शय हमारी आँखों को अच्छी लगती है, हम अच्छे मौसम में उसका दीदार करना पसंद करते हैं, उसके रूबरू होना पसंद करते हैं। और एक अजीब सी खुशी हमारे दिल को, हमारी आँखों को मैसर होती है, क्योंकि दिल की जो उमंग होती है वो बारिश की बूंदों के साथ एक ऐसा लिबास इख्तियार कर लेती है जो कि यही चाहता है कि बस अब वो घड़ी आ जाए जब दीदार हो जाए, मुलाकात हो जाए, और दिल की जो प्यास है इन बारिश की बूंदों के साथ दूर हो जाए या मिट जाए। और जब कोई अपना अपने साथ होता है तो बारिश की ये नमी का एहसास ज़िंदगी में और भी ज़्यादा खुशियों को दुबला कर देता है। वाकई में बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अगर आप आज़माना चाहते हैं तो देखिए, थोड़ा सा अपनी खिड़की, अपने घर की खिड़की के बाहर झांक कर देखिए कि जब बारिश की बूंदें गिर रही हैं, मौसम जब खूबसूरत हो रहा है, तो कोई ना कोई वो है आपका अपना जो आपकी यादों में पूरी तरीके से आ जाता है, और बस आप उसके बारे में या उसके मुतालिक सोचना शुरू कर देते हैं, उसे पसंद करना शुरू कर देते हैं और ख्वाहिश करते हैं। या फिर कोई ऐसा वक्त जब आपकी उनसे मुलाकात हुई थी, जब बात हुई थी पहली मर्तबा, बारिश में इस खूबसूरत से मौसम में, ऐसे ही खूबसूरत से मौसम में, तो वैसी घड़ियां, वो घड़ियां याद आना शुरू हो जाती हैं। बहरहाल, बारिश के साथ दिलों की जो कैफियत होती है वो अलग-अलग तस्वीरों में छलकने लगती है। एक खूबसूरत सा रंग हम आपको इस गीत के जरिए सुनाना चाहते हैं। तो मेरे साथ यूं ही रहिए, खूबसूरत मौसम में, रंगीन मौसम में हम सुनते हैं एक और बारिश वाला गीत। जी हाँ, ये नगमा आप सभी के लिए।

जी दोस्तों, पहली बारिश में और तू एक दूजे से मिलने आए, ये प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे। अभी आवाज़ ही थी अनुराधा पौजवाल और कुमार सानू जी की। इन खूबसूरत आवाज़ों को सुनने के बाद तो दिल की कैफियत और भी मज़ेदार हो ही जाती है, क्योंकि आवाज़ें ही इतनी प्यारी थी। और एक दौर था जब कि इनकी आवाज़ें बहुत ही ज़्यादा अपने ज़ोर पर थीं और पब्लिक बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, और ये जोड़ी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर हो गई थी। इस तरह के कई जुएट सॉन्ग्स आप दोनों ने दिए थे, और ख़ास तौर पर फिल्म फूल और कांटे, और उस दौर में ये गीत जो अभी आपने सुना, फिल्म फूल और कांटे से हमने लिया था, और उस दौर के तकरीबन 90s के तकरीबन कई गीत

कुमार सानू जी की आवाज़ में और अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में, कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में हमने सुने, और ऐसा लगता था कि हर दिल हर गीत अपना एक असर छोड़ रहा है, अपना एक अलग असर छोड़ रहा है। वाकई में मौसम हो या ना हो, गीतों का ऐसा असर होता था। लफ्ज़ इतने खूबसूरत निखर के आते थे इनकी खूबसूरत, इनके खुश गलों से, कि मौसम अपने आप बन जाता था। लेकिन आज तो मौसम भी है और आवाज़ भी है और बात भी है, तो बात डबल मज़ेदार हो रही है। तो क्यों ना हम कुछ और प्यार भरे नगमा रेज गीतों का सहारा लेते हुए आगे बढ़ें। एक और प्यारा सा नगमा मैं आपको सुनाना चाहूँगी, जिसमें बारिश की, बरसात की एक रात की एक अनोखी दास्तान छुपी हुई है। मेरे मुराद है फिल्म बरसात की रात के इस गीत से। लीजिए सुनिए ये खूबसूरत गीत, आवाज़ है मोहम्मद रफ़ी जी की।

दोस्तों, हम आपको बता दें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम गीत सुरीली का दशा, प्रोग्राम नए रंग में। और अभी मैं बताना चाहूँगी कि वक्त की रफ्तार क्या बता रही है। स्टूडियोज़ की घड़ी में 10:22 और पूरे 20 सेकंड्स हुआ चाहते हैं। तो दोस्तों, कुछ वक्त हमारे और आपके दरमियान अभी बाकी है, और बहुत सारी बातें भी बाकी हैं, और कुछ और भी नगमा रेज गीत हमारे साथ हैं। तो मौसम में बरसात के ये प्यारे प्यारे बहुत सारी बातें भी हमको करनी हैं कि बरसात के मौसम में कौन क्या होता है, क्या नहीं होता है, कैसे होता है, दिल क्या चाहता है। और ख़ास तौर पर मैं जो आपको हमारे प्रोग्राम का ये गीत सुनाने जा रही हूँ, इसमें किसी के आने की बात हो रही है, और जब वो आता है तो क्या होता है, या जब वो आती है तो क्या होने लगता है, ये सभी बातें आपको जानने को मिलेंगी इस गीत में, यानी कि इस सॉन्ग में। तो चलिए, लता मंगेशकर जी की खूबसूरत आवाज़ में सुनते हैं ये गीत। जी हाँ दोस्तों, अंदाज़ा तो शायद आपने सही लगाया होगा, नहीं है तो भी चलता है, क्योंकि दिल तो पागल ही है, और दिल में जो आता है हम वो सोचने लगते हैं, और कभी-कभी कह भी डालते हैं। तो इस पागल से दिल को हम कैसे मनाएं, कैसे कहें, लेकिन दिल तो पागल है मूवी से ये गीत हमने आपके लिए चुना है, तो लीजिए सुनिए।

वाह, क्या बात है, क्या आवाज़ है। दोस्तों, आपने अभी सुना ये गीत जो कि हमने फिल्म दिल तो पागल है से आपको सुनाया है, और आवाज़ लता मंगेशकर की आपने सुनी। कितनी खूबसूरत आवाज़ है, और कितनी मेलोडी है, कितना सुरीलापन है आपकी आवाज़ में। और शायद आपको ये भी पता होगा कि वक्त के साथ साथ, पीरियड के साथ साथ, ज़माने के साथ साथ, लता जी की आवाज़ में भी कई तब्दीलियां रोनुमा हुई, और आपने हर वक्त के हिसाब से, एतबार से, अपनी आवाज़ को वैसा ही रंग दिया, वैसा ही रूप दिया जो कि वक्त के हिसाब से रहता था। दोस्तों, ये तो फिल्म थी, नई फिल्म यानी कि हाल हाल की थी फिल्म, लेकिन जब पुरानी फिल्मों में लता जी की आवाज़ के तस्करे हम करते हैं या आवाज़ हम आपकी सुनते हैं, तो वो एक अलग सा नशा, एक अलग सा अलग सी नगमगी उसमें हमें मिलती है। और आवाज़ तो बस पूछिए ही मत, आवाज़ के अलग अलग अंदाज। लता जी की आवाज़ में ही कुछ ऐसी बात थी कि हर वक्त, ऐसा लगता था कि आवाज़ तो एक है लेकिन इसके रूप कई हैं। तो आइए, आपकी आवाज़ का एक और बहुत ही मशहूर, बहुत ही पुराना और बहुत ही रेट्रो अंदाज़ हम सुनते हैं, बारिश के मौसम का। लीजिए, सुनिए।

दोस्तों, जब बहार आती है तो दिल का हाल कुछ यूं ही होने लगता है। बहारों के ताल्लुक से बहुत कुछ कहा गया है। बड़े हसीन नगमे छेड़े गए हैं, बहुत ही अच्छे अशआर लिखे गए हैं, जिनके कुछ रंग कुछ पहलू हम आपको हमारे प्रोग्राम के ज़रिए सुना रहे हैं। तो आइए इस सिलसिले को जारी रखते हैं एक और बहारों भरा, प्यार भरा, मौसम की खुशगवारी को समेटा हुआ एक और नगमा आप सभी के हवाले करते हैं। लीजिए सुनिए ये गीत। दोस्तों, ख़ास तौर पर ये गीत हमने आप सभी के लिए चुना है। फिल्म है 1942, अ लव स्टोरी।

0: रेनबो 101.9।
1: तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों के निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

जी, दोस्तों प्रोग्राम गीत सुरीले गाता जा में हम आपके साथ हैं और सुरीले मत भरे गीत हम आपको सुना रहे हैं। तो चलिए एक और गीत की जानिब हम बढ़ेंगे। सावन का महीना जब आता है तो क्या क्या होने लगता है, और जब बारिश होती है तो दिल की हालत किस तरह से होती है, और जुबान किस तरह के गीत गाने लगती है। ये सभी इस तरह की बातें हम आपसे अभी कर रहे हैं इस प्रोग्राम में, और साथ ही साथ नगमे भी सुना रहे हैं हम बरसात से मुतालिक, और बारिश के हवाले से, और मौसम के हवाले से, खुशगवारी के हवाले से। तो आइए सावन के इस मौसम के हवाले से भी हम आपको एक बहुत ही यादगार, बहुत ही मज़ेदार गीत सुनाते हैं। लीजिए, सुनिए।

दोस्तों, आप सुन रहे हैं खूबसूरत प्यार भरे गीत इस प्यारे से मौसम में। लेकिन मौसम जैसे जैसे बदलता है, वक्त भी बदलता है और वक्त के तकाजे भी बदलते रहते हैं। हम यही चाहते हैं कि हमारी और आपकी ये जो दोस्ती है, ये कभी ना बदले, ये ऐसी ही रहे और इसमें मजीद निखार पैदा हो जाए। क्यों, क्या आपकी भी यही ख्वाहिश है? बिल्कुल, हम तो जो भी कहते हैं दिल से कहते हैं और ये ख्वाहिश हमारी 100% खरी है। यही हमारी ख्वाहिश है कि हम आपके साथ, हमारी ये जो दोस्ती का रंग है ये और भी गहरा होता रहे। दोस्ती का रंग गहरा ज़रूर होगा जब आप हमारे साथ बने रहेंगे। जी दोस्तों, प्रोग्राम गीत सुरीले गाते जा में हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे और क्योंकि साथ ही इतना हसीन था, रंगीन था, सुरीले गीत थे। और जब मौसम की बात होती है तो आज का जो मौसम है, यानी कि जो जो प्रेजेंट मौसम चल रहा है, जो मौजूदा मौसम चल रहा है, वो बड़ा ही खुशगवार है। तो आज के गीत मैं उम्मीद करती हूँ कि आपके मौसम को चार चांद ज़रूर लगा दिए होंगे। तो इसी उम्मीद के साथ हम आपसे अलविदा लेते हैं। हमारे अगली पेशकश में कुछ और

मजेदार गीत और प्यार भरी बातें लिए हम आपसे जरूर मुलाकात करेंगे। दोस्तों, गीत सुरीले गाता जा का सिलसिला तो अब हुआ खत्म, लेकिन नैरन प्रोग्राम का सिलसिला अभी बाकी है। हमारे सिलसिले की आखिरी कड़ी जो कि हम आप तक पेश करते हैं बहुत ही प्यारे से पैगाम की शक्ल में। जी हाँ दोस्तों, मेरी मुराद है प्रोग्राम पयामे शब से। तो लीजिए आखिरी पेशकश पयामे शब, आपकी नजर करते हैं, समाप्त करें।

गहरी खामोश झील के पानी को यूं न छेड़, छींटे ओढ़े तो तेरी कबा पर भी आएंगे। दूसरों के मामलात में बिला वजह मुदाखलत, इश्तियाल अंगेजी और बेसबब तनाजात से बचना चाहिए। हर खामोशी कमजोरी नहीं होती और हर सब्र करने वाला बेबस नहीं होता। बाज़ औक़ात किसी पुरसकून इंसान को बार बार आजमाना या उसकी खामोशी को चैलेंज करना खुद अपने लिए मसाइल पैदा करने का सबब बन जाता है। इसीलिए दूसरों के सुकून, इज्जत और हुदूद का एहतराम करें, क्योंकि जो आग हम दूसरों के लिए भड़काते हैं उसकी तपिश खुद हमें भी महसूस हो सकती है।

0: दोस्तों, पयाम शब अभी आपने सुना और वाकई बहुत ही मानी खैस था ये पैगाम, इसके अल्फाज खसूसी तौर पर। तो पयाम शब हर शब हमें कुछ नया दर्स देता है, नया पैगाम देता है, नया मैसेज देता है और हमारे ख्यालात को एक नई परवाज़ देता है, हमारी मालूमात में इजाफा करता है और हमको जीने का सलीका सिखलाता है। तो इसी तरह के प्यार भरे संदेश, प्यार भरे मैसेजेस और पैगाम हम आपको भेजते रहेंगे हमारे अगले प्रोग्राम्स के ज़रिए। तो फिलहाल ये थी हमारे आज की बज़्म की आखिरी पेशकश। तो इसी के साथ हम आपसे अलविदा लेना चाहेंगे, मिलेंगे नैरंग की एक और ख़ास बज़्म सजाए। आप सभी से बहुत ही प्यार भरे अंदाज में इंतज़ार कीजिए कल तक का, आपसे ज़रूर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए सुनते रहिए हमारे प्रोग्राम्स, खुसूसी तौर पर FM रेनबो पर के। जी हाँ, मैं आपके साथ आपकी दोस्त, आपकी रेडियो दोस्त अब आपसे अलविदा लेना चाहती हैं। शुक्रिया। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, रात के 11 बजने ही वाले हैं। अभी चंद लम्हात में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और न्यूज़।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की।

0: और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने आज नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अलमार जुकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि 22 जून को दिल्ली से अमृतसर जा रही एयर इंडिया की एक उड़ान को रनवे निरीक्षण के दौरान के कारण अमृतसर हवाई अड्डे पर कुछ समय तक प्रतीक्षा करने के निर्देश दिए गए थे। मंत्रालय के अनुसार इस दौरान विमान रडार के मार्गदर्शन के तहत कुछ समय के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर गया था। ये प्रक्रिया पाकिस्तान के हवाई यातायात नियंत्रण अधिकारियों के समन्वय से की गई। बाद में विमान को दिल्ली वापस भेजा गया, जहां वे सुरक्षित रूप से उतरा। मंत्रालय ने बताया कि घटना की सूचना न देने के मामले में संबंधित एयर ट्रैफिक कंट्रोलर और विमान चालक दल के खिलाफ अंतरिम कार्रवाई की गई है। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला इलाके में निर्माणाधीन गोदाम की छत गिरने की घटना के बाद राहत और बचाव अभियान जारी है। हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। घायलों का इलाज सरकारी SSKM मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में चल रहा है। इस बीच मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घटनास्थल का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि कोलकाता नगर निगम घटना की रिपोर्ट तैयार कर रही है। उन्होंने कहा कि हादसे की विस्तृत जानकारी कल विधानसभा में दी जाएगी। गुजरात के भुज क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय में आज AI आधारित स्वचालित ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक का उद्घाटन किया गया। नई व्यवस्था के अंतर्गत ड्राइविंग टेस्ट से पहले वाहन का पंजीकरण, प्रशिक्षण वीडियो देखना, फोटो स्कैनिंग और RFID सेंसर लगाना अनिवार्य किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पूरी प्रक्रिया अधिक निष्पक्ष बनेगी। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 11:11 और 3 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत का। और गीत मेरे मन मीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है, जिन्हें आप बहुत ही पसंद करते हैं।

सुनहरा दौर यानी गोल्डन एरा, ये वो दौर था जहाँ पर हिंदी सिनेमा ने एक अलग अपनी पहचान बनाई, एक नए नए प्रयोग के साथ और नए नए विषयों पर, सामाजिक विषयों पर फिल्में बनाई गई जो आज तक याद रह गई, और वही फिल्में भारतीय हिंदी सिनेमा की पहचान बनी। तो आइए आज के सफर का आगाज करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म से। आज की फिल्म

अला और भारत भूषण की जोड़ी अपनी दिलकश अदाकारी से इस अफसाने को यादगार बना देती है। फिल्म में बीजन एक जमींदार का बेटा नर्तकी बनानी से मोहब्बत करता है, मगर सामाजिक फासले उनके मिलन में दीवार बन जाती है। अधूरी रह गई ये चाहत पुनर्जन्म के जरिए मुकम्मल होने की राह तलाशती है और ये फिल्म इस तरह से आगे बढ़ती है। कमर जलालाबादी ने इस फिल्म के गीतों को लिखा है और ओपी नैयर साहब ने बहुत ही खूबसूरती से इसका संगीत दिया है। तो आइए फिल्म फागुन का ये बेहद खूबसूरत नगमा हम आपको सुनाते हैं आशा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ों में।

नगमे के साथ। और ये नगमा है फिल्म हावड़ा ब्रिज से। यह फिल्म आई थी 1958 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में अशोक कुमार, मधुबाला और उनके साथ थे केएन सिंह, मदनपुरी, ओम प्रकाश, धूमल, सुंदर, ब्रह्मा भरद्वाज, चमनपुरी, निर्मल कुमार, महमूद, मीनू मुमताज़ वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है कमर जलालाबादी साहब और हसरत जयपुरी ने। और इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा जो कमर जलालाबादी साहब का लिखा हुआ, आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा भोसले जी की। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत नगमा आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

फागुन फिल्म का ये नगमा आशा जी और मोहम्मद रफ़ी साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत

मोहम्मद रफ़ी साहब और आशा जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में यह नगमा था फिल्म हावड़ा ब्रिज से। आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं, यानी गोल्डन एरा के उन गोल्डन गीतों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब हैं। तो आइए इस सफ़र को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर फिल्म के नगमे की तरफ। और वो फिल्म है 1960 में आई के आसिफ साहब के निर्माण और निर्देशन में मुगले आजम। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में पृथ्वीराज कपूर, दिलीप कुमार, मधुबाला और साथी कलाकारों में दुर्गा खोटे, निगार सुल्ताना, अजीत कुमार, मुराद जिलोबाई, विजयलक्ष्मी, एस नज़ीर, सुरेंद्र, जॉनी वॉकर, जलाल आगा, बेबी तबस्सुम और गोपी कृष्ण वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा है शकील बदायूनी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है नौशाद साहब ने। और बात जब नौशाद साहब की हो तो फिर उनके संगीत के क्या कहने। उनका संगीतबद्ध किया हुआ नगमा सीधे दिल में उतर जाता है। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं लता जी और शमशाद बेगम की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर गीत मेरे मनमीत के इस बेहद खूबसूरत महफिल में।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर और OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज़ आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:32 और 45 सेकेंड, और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है, और आप इसे बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, और ऐसे ही नगमों के साथ हम हाजिर हैं जो गोल्डन एरा की पहचान बनते हैं, सुनहरे दौर की पहचान बनते हैं। ये वो नगमे हैं जो हम सब उन्हें बार बार सुनते हैं, गुनगुनाते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और सुनहरे दौर के इस नगमे को और आगे बढ़ाते हैं एक बेहद खूबसूरत फिल्म आवारा के एक नगमे से। यह फिल्म आई थी 1951 में। राज कपूर साहब के निर्माण और निर्देशन में बनी इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में पृथ्वी राज कपूर, खुद राज कपूर, नरगिस, लीला चटनीस, के एन सिंह, शशि कपूर वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा जिसको लिखा है शैलेंद्र साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। हालांकि इस फिल्म में दो गीतकारों ने गीत लिखे, एक शैलेंद्र साहब और दूसरे हसरत जयपुरी साहब, पर यह नगमा जो मैं आपके लिए लेकर आया हूं उसे लिखा है शैलेंद्र साहब ने। तो आइए सुनवाते हैं वही नगमा आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर लता जी और मुकेश साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ों में।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही मशहूर फिल्म के नगमे की तरफ। और वो फिल्म है 1958 में आई मधुमति। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में वैजयंती माला, दिलीप कुमार, जॉनी वॉकर और साथी कलाकारों में प्राण, जयंत, रामायण तिवारी, तरुण बोस और बूडो आडवाणी वगैरह ने बेहद खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के संगीत की अगर बात करें तो मधुमति का संगीत 1958 का सबसे ज्यादा बिकने वाला हिंदी फिल्म संगीत बना। इस फिल्म के लिए सलील चौधरी को पहला फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला जो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का मिला। सुहाना सफर और ये मौसम हसी मुकेश के सबसे लोकप्रिय गीतों में से एक है और आज भी बहुत पसंद किए जाते हैं। उसी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं लता जी और मन्ना डे साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में।

बहुत ही कामयाब रहे। और वो फिल्म थी कमाल अमरोही साहब के निर्माण और कमाल अमरोही साहब के निर्देशन में यह फिल्म थी महल, जिसका निर्माण किया था अशोक कुमार साहब ने। और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में अशोक कुमार, मधुबाला और साथी कलाकारों में एम कुमार, विजय लक्ष्मी, कानू राय, नाजिर हुसैन, शीला नायक, लीला पांडे, नीलम, कनीज, जगन्नाथ, मोहसिन वगैरह, ये तमाम लोग थे। और इन लोगों ने अपने अभिनय से इस फिल्म को एक यादगार फिल्म बना दिया। इस फिल्म में तकरीबन 8 नगमे थे और उन्हीं उन तमाम गीतों को लिखा था जे नक्शाब ने, और इन गीतों को बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा खेमचंद प्रकाश साहब ने। तो आइए इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा हम आपको सुनवाते हैं, राजकुमारी और जोहराबाई अंबाले वाले की आवाजों में, आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। कुछ नगमे ऐसे हैं जिन्हें आप बार बार सुन चुके हैं और कुछ ऐसे हैं जिन्हें शायद नहीं सुन पाए हैं। उन्हीं नगमों में से ये बहुत ही प्यारा नगमा आपके लिए है।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत महफिल में सुनहरे दौर के उन नगमों के साथ हम हाजिर हैं। और अगला नगमा एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मशहूर फिल्म से, और ये फिल्म थी 1957 में आई नया दौर, जिसके निर्देशक थे और निर्माता भी बी आर चोपड़ा साहब। और इस फिल्म में दिलीप कुमार साहब, वैजयंती माला ने मुख्य भूमिका निभाई थी, साथ में अजीत जीवन, जॉनी वॉकर, चांद उस्मानी, नाजिर हुसैन, मनमोहन कृष्ण, लीला चटनीस, डेजी ईरानी, मूलचंद, कुमकुम वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इसी फिल्म का एक बहुत ही खूबसूरत नगमा हम आपके लिए लेकर आए हैं। आवाजें हैं शमशाद बेगम और आशा भोसले जी की। इस फिल्म के गीतों को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा है ओपी नैयर साहब ने। तो आइए सुनते हैं वही नगमा आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

0: इसी नगमे के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाज़त आज के गीत मेरे मनमीत की महफिल को यहीं पर समाप्त करने की। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद अंजू रहेगी आपके साथ लेकर अगला प्रोग्राम। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों को शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफार्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जैमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने नई दिल्ली में सामरिक रक्षा साझेदारी ढांचे के अंतर्गत रक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक बैठक आयोजित की। बैठक की सह अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के संयुक्त सचिव अमिताभ प्रसाद और संयुक्त अरब अमीरात के ब्रिगेडियर स्टाफ जमाल इब्राहिम मोहम्मद इब्राहिम अल मारजूकी ने की। चर्चा का मुख्य विषय रक्षा उद्योग सहयोग का विस्तार करना, नवाचार को बढ़ावा देना, विशिष्ट तकनीकों का लाभ उठाना और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना था। विदेश मंत्री

0: सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। भारत और तजाकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की पांचवी बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉ विनोद बहाड़े और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शेराली जोनो ने की। बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों तथा उग्रवाद, कट्टरपंथ, आतंकवाद के वित्त पोषण, तकनीकी दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की संघीय न्यायाधीश डेनिस कैस्पर ने कहा कि चुनावों को विनियमित करने का अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। ओमान ने होर्मुज जलडमरू मध्य से एक अस्थायी समुद्री गलियारे के खोलने की घोषणा की है। ये वाणिज्यिक जलमार्ग को बहाल करने और खाड़ी में फंसे हजारों नाविकों के समुद्री संकट को कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप बी मुकाबले में देर रात स्विट्जरलैंड का मुकाबला कनाडा से होगा। वहीं इसी ग्रुप में कतर और बोस्निया एंड हर्जेगोविना आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज शेयर बाय अपराजिता नायर। Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Teerth in New Delhi. During the meeting, Mr. Modi reviewed four major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across four states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister stressed that delays in infrastructure projects lead to cost escalation and deprive citizens and industries of timely benefits. He directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. The Prime Minister also emphasized the effective use of the PM Gati Shakti National Master Plan for efficient planning and timely execution of infrastructure projects. The Prime Minister's office informed that the meeting also reviewed the TB Mukt Bharat Abhiyan. Mr. Modi also reviewed grievances related to cybercrime and digital arrest cases. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamie Sun Greer and his delegation in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said, "They reviewed the progress of the ongoing India-U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries." He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. The 12th Indo-European Union Human Rights Dialogue was held in New Delhi yesterday. During the dialogue, both sides noted their commitment to the promotion and protection of all human rights and emphasized the universality, indivisibility, and interrelated

तारों में नहाई रात और उस पे सरगोशी करती है हवा। बार बार ये एहसास दिल करा रही है कि आगाज हो चुका है उस महफिल का जिसमें शिरकत होती है आपकी और महफिल सजती है आपके अपने ही चैनल जिसका नाम है आकाशवाणी गोल्ड, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। मैं हूं अंजू आपके साथ, स्वागत है आप सभी का। कार्यक्रम लेकर आई हूं निशिगंधा। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और शुरुआत बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ, फिल्म स्वामी और जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

कोई और करे क्या तुम्हारी चाहत का यूं हिसाब, कोई और करे क्या तुम्हारी चाहत का यूं हिसाब, हमारे जितना प्यार पाओगे तो खुद को भी भूल जाओगे।

मोहब्बत के काबिल समझा उसने मुझे, ये उसका करम है। मोहब्बत के काबिल समझा उसने मुझे, ये उसका करम है। वरना तो इस जमाने में वफा ढूंढना सिर्फ एक वहम।

लोग कहते हैं मेरा महबूब चांद जैसा है, लोग कहते हैं कि मेरा महबूब चांद जैसा है, नहीं नहीं लोग तो धोखे में हैं, चांद मेरे महबूब जैसा है।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

जो दोस्त हमारे साथ अभी अभी जुड़े हैं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंजू है आपके साथ और कार्यक्रम है निशिकंधा।

0: न जाने कितने सपने तेरे लिए इन आँखों में सजाए हैं, न जाने कितने सपने तेरे लिए इन आँखों में सजाए हैं, हमने तो अपनी जिंदगी के हर लम्हे बस तुझसे ही तो महकाए हैं।
1: नहीं नहीं

खुदा से और क्या मांगूं मैं अपनी दुआओं में, खुदा से और क्या मांगूं मैं अपनी दुआओं में कि बस उम्र भर का साथ मिल जाए तेरा इन राहों में।

कहने को तो बहुत कुछ है इस दिल में, मगर तेरी एक मुस्कुराहट के आगे मेरे सारे लफ्ज कम पड़ जाते हैं।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, फिर आपसे दोबारा मिलूंगी 1:10 पर कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर, जिसमें चलेंगे हुजरे दौर के बहुत ही बेहतरीन गीत सुनने के लिए। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माई भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि दूत जेमिसन ग्रीर और उनके प्रतिनिधि मंडल के साथ नई दिल्ली में बैठकें की। श्री गोयल ने भारत अमरीकी व्यापार वार्ता की प्रगति की समीक्षा की और दोनों देशों के बीच आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करने के अवसरों की खोज की। उन्होंने राजदूत ग्रीर के नेतृत्व और दोनों पक्षों के रचनात्मक और प्रगतिशील तरीके से वार्ता को आगे बढ़ाने के निरंतर प्रयासों की भी सराहना की। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन

0: फोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों के लिए यात्रा परामर्श जारी किया है। दूतावास ने कहा है कि अगली सूचना तक भारतीय नागरिक जब तक आवश्यक ना हो ईरान की यात्रा ना करें। दूतावास ने भारतीय नागरिकों से कहा है कि वे अपने आसपास की स्थिति पर लगातार नजर रखें और स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का पालन करें। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव संबंधी कार्यकारी आदेश के अधिकांश प्रावधानों पर स्थायी रोक लगा दी है। बोस्टन की संघीय न्यायाधीश टेनिसन कैस्पर ने कहा कि चुनावों को विनियमित करने का अधिकार राज्यों और कांग्रेस के पास है, राष्ट्रपति के पास नहीं। राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश में मतदाता पंजीकरण के लिए नागरिकता का दस्तावेजी प्रमाण अनिवार्य करने, चुनाव के बाद प्राप्त डाक मतपत्रों की गिनती रोकने तथा नियमों का पालन न करने वाले राज्यों के लिए संघीय धनराशि रोकने जैसे प्रावधान शामिल थे। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार इवान सेपेडा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उन्होंने दक्षिणपंथी कारोबारी एबिलार्डो डेला एस्प्रियला ने बेहद कम अंतर से पराजित किया है। हार स्वीकार करते हुए श्री सेपेडा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। वहीं अंतिम आधिकारिक मतगणना की प्रक्रिया अभी जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष इब्राहिम। Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi. During the meeting, Mr. Modi reviewed four major infrastructure projects in the road, power, industrial, corridor and metro rail sectors across four states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The PM directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi also reviewed grievances related to cyber crime and digital arrest cases, expressing concern over the growing misuse of digital platforms to defraud citizens. He called for intensified public awareness campaigns and directed stakeholders to strengthen systems for prevention, reporting, investigation and grievance redressal in cyber fraud cases. The PM's office informed that the meeting also reviewed the TB Mukt Bharat Abhiyan. The PM highlighted the importance of leveraging emerging technologies, including artificial intelligence, in the fight against tuberculosis. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamieson Greer and his delegation in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries. He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. India and Tajikistan held the fifth meeting of the Joint Working Group on Counterterrorism in Dushanbe yesterday. Ministry of External Affairs said that during the meeting, both sides discussed threats posed by terrorist groups globally and in their respective regions. The two sides also discussed measures to strengthen bilateral cooperation in the field of counterterrorism through enhanced information sharing, capacity building, and the exchange of best practices. In West Bengal, rescue operations are in full swing after an under-construction godown collapsed, trapping workers beneath heavy iron debris near Taratala in Kolkata yesterday. Five people were declared dead at the SSKM hospital and the injured are being treated there. Chief Minister Suvendu Adhikari visited the accident site and lauded the efforts of rescue personnel. He informed the media that Kolkata Metropolitan Authority would submit a report to him and he would brief the assembly today.

दोस्तों, गुजरे जमाने के गीत और संगीत में जो मधुरता थी वो आज के श्रोताओं को भी बरबस अपनी ओर खींचती है और उसी को बरकरार रखते हुए हम लेकर आए हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है गीत सुहाने। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ आपने ट्यून किया है और मैं हूँ एक बार फिर से आपके साथ अंजू। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और समय हुआ है 1:11:30। शुरुआत कर रही हूँ फिल्म मधुमती से। ये फिल्म 1958 में आई थी और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने।

ऐसे पुराने गीतों को सुनकर यकीन बहुत अच्छा लगता है, और जब आजकल की युवा पीढ़ी भी इन गीतों को सुनती है, इनके रिमिक्स बनते हैं, तो यकीन मानिए दिल खुश हो जाता है। लेकिन ओरिजिनल गीत ओरिजिनल ही होता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जो राज कपूर द्वारा निर्मित और निर्देशित थी, और ये फिल्म 1951 में आई थी। इसका नाम था आवारा। राज कपूर साहब की एक खासियत ये थी कि वह अपनी फिल्मों में मुख्य भूमिका खुद ही निभाते थे, और सबसे मज़ेदार बात यह रही कि उनके ही अपने परिवार के 3 सदस्यों ने इस फिल्म में प्रमुख भूमिकाएं निभाई। पिता पृथ्वीराज कपूर ने जज रघुनाथ की भूमिका निभाई, और सबसे छोटे भाई शशि कपूर ने राज कपूर के बचपन का रोल किया। और तो और, पृथ्वीराज कपूर जी के पिताजी और राज कपूर के दादाजी दीवान विश्वनाथ कपूर ने भी एक छोटा सा रोल किया। आगे बात करूंगी इस फिल्म ने कहां कहां सफलता पाई। पहले एक बहुत ही प्यारा गीत इसी फिल्म से।

अपने देश के अलावा ये फिल्म विदेशों में बहुत पॉपुलर हुई और कई जगह उसका गीत आज भी गाया जाता है, जिसे गाया मुकेश और लिखा शैलेंद्र ने, संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। जी हाँ, आवारा हूँ। ये फिल्म कान फिल्म फेस्टिवल में भी ग्रैंड प्राइज के लिए नॉमिनेट हुई। इस फिल्म के सभी गीत बहुत मशहूर हुए। हसरत जयपुरी साहब ने भी कुछ गीत इसके लिखे। तो चलिए सुनते हैं इसका दूसरा गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

दोस्तों बात करते हैं फिल्म अलबेला की। ये फिल्म 1951 में आई थी। ये क्लासिक बॉलीवुड म्यूजिकल कॉमेडी फिल्म है और इसका निर्देशन भगवान दादा ने किया और इसमें उन्होंने गीता बाली के साथ अभिनय भी किया है। ये फिल्म अपने यादगार गानों, एक संघर्षरत कलाकार के सपनों को साकार करने की बहुत ही दिलचस्प कहानी है। कहा जाता है कि इस फिल्म ने उस दौर में सबसे ज़्यादा कमाई की थी। और जानते हैं एक जो गीत है इसका, शोला जो भड़के, ये एक ऐसी घटना बन गई थी इसकी कि जब ये गाना पर्दे पर आता था तो सिनेमा घर में दर्शक इसे बजते समय स्क्रीन पर सिक्के फेंकते थे। और एक बड़ी रोचक जानकारी ये है कि भगवान दादा को सेट पर पेशेवर डांसर नहीं मिल पाने के कारण उन्होंने अपने स्टंटमैन और फाइटर से ही फिल्म के लिए नृत्य की कोरियोग्राफी कराई। नृत्य की इस अनोखी और मौलिक शैली ने उनकी एक अलग ही पहचान बनाई। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत जिसे गाया है लता मंगेशकर ने और उनका साथ दिया है सी रामचंद्र ने।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

समय हुआ है 1:32 और 52 सेकंड। कार्यक्रम है गीत सुहाने, मैं हूँ आपके साथ अंजू। अभी जो मैं आपको गीत सुनाने जा रही हूँ, ये फिल्म है दो बीघा जमीन, जो 1953 में प्रदर्शित हुई थी, और इस गीत को गाया है लता मंगेशकर के साथ मन्ना डे ने और साथियों ने, संगीत दिया है सलिल चौड़।

दोस्तों बात करते हैं 1953 में आई फिल्म लड़की की। एम वी रमन द्वारा निर्देशित हिंदी सिनेमा के एक बेहद रोमांटिक लोकप्रिय फिल्म थी और एक कॉमेडी फिल्म थी। इस फिल्म ने अपने दौर में बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि पाई और दर्शकों को खूब हंसाया था। इस फिल्म में वैसे तो मुख्य रूप से हीरो थे भारत भूषण, लेकिन किशोर कुमार ने सेकेंड लीड में इतनी ज़बरदस्त अपनी प्रतिभा दिखाई कि सबका दिल जीत लिया। और कहा जाता है कि किशोर कुमार के अभिनय का जो शुरुआत मानी जाती है, पहली हिट फिल्म यही मानी जाती है। और दोस्तों ये फिल्म असल में दक्षिण भारत की ब्लॉकबस्टर फिल्म पेन की रीमेक थी। और दिलचस्प बात यह है कि तमिल मूल की जो फिल्म थी, हिंदी रीमेक में लड़की के नाम से ये फिल्म बनाई गई, तो दोनों में ही जो मुख्य अभिनेत्रियां थीं वैजयंती माला और अंजलि देवी, उन्होंने ही तमिल वर्जन में इस फिल्म में काम किया था। लेकिन तमिल वर्जन में वैजयंती माला और अंजलि देवी के अपोजिट थे जेमिनी गणेशन, और जबकि हिंदी में भारत भूषण और किशोर कुमार को लिया गया था। वैजयंती माला ने अपने करियर के शुरुआती दौर में इस फिल्म में रानी मेहरा के नाम की एक आत्मनिर्भर और प्रगतिशील लड़की का किरदार निभाया। फिल्म में उनके शास्त्रीय और आधुनिक नृत्य ने दर्शकों को

बेहद प्रभावित किया, जिससे आगे चलकर उन्हें बॉलीवुड की पहली डांसिंग सुपरस्टार बनाया। तो चलिए सुनते हैं उसी फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

अब बात करते हैं फिल्म दीदार की। ये फिल्म 1951 में ही प्रदर्शित हुई थी। नितिन बोस द्वारा निर्देशित हिंदी सिनेमा की एक ऐतिहासिक और बेहद भावुक फिल्म दीदार। ये फिल्म हिंदी सिनेमा के दिग्गज अभिनेता दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग के रूप में स्थापित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण फिल्मों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि ये फिल्म जब सिनेमाघर में प्रदर्शित हुई तो दर्शक इतने भावुक हो जाते थे कि वो लोग रोने लगते थे वहीं पर ही। और इस फिल्म को बार बार देखने के लिए टिकट न मिलने पर बाहर भीड़ बहुत बेकाबू हो जाती थी। कलाकारों की बात करें तो बाल कलाकारों की शुरुआत जो हुई थी, परीक्षित सहनी साहब ने दिलीप कुमार साहब के बचपन का किरदार निभाया, वहीं मशहूर होस्ट और अभिनेत्री तबस्सुम ने नरगिस के बचपन का किरदार निभाया। तो चलिए सुनते हैं इसी फिल्म का एक गीत आशा भोसले और गीता दत्त की आवाज़ में।

अभी आपने फिल्म दीदार से एक गीत सुना जिसे गाया था लता मंगेशकर के साथ शमशाद बेगम ने। महबूब खान साहब की एक फिल्म आई थी आन, 1952 में ये फिल्म प्रदर्शित हुई थी। ये भारत की पहली टेक्निकल फिल्म थी। दिलीप साहब, प्रेमनाथ, निम्मी, हालांकि नादिरा जी को नरगिस जी की जगह रिप्लेस किया गया था, ये बहुत बड़ी हिट फिल्म रही। हालांकि इसके रिकॉर्ड को श्री 420 ने 3 साल बाद तोड़ा।

हालांकि इस फिल्म का बजट बहुत ज़्यादा था, ये पहली ऐसी फिल्म थी जो कि दुनिया भर में प्रदर्शित की गई। लंदन में भी इस फिल्म का एक प्रीमियर हुआ जिसमें महबूब खान साहब और उनकी पत्नी और अभिनेत्री निम्मी ने उसको अटेंड किया। तो चलिए सुनते हैं ऐसी फिल्म का एक गीत लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: चांद के पीछे भाग रहा हूं मगर अब तक पकड़ नहीं पाया उसे। एक बात बताइए,
1: क्या
0: ऐसा महसूस क्यों होता जैसे आपको कहीं देखा हो?
1: सपनों में देखा होगा
0: जी। मैं सपने बहुत देखा करता हूं।

दोस्तों हमारा मिलन भी होगा, लेकिन अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। समाचारों के बाद 2:10 पर फिर से आपसे मिलूंगी। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनयान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के

0: संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। भारत और ताजिकिस्तान के बीच आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबो में आयोजित की गई। बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर विनीत बहाड़े और ताजिकिस्तान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शिराली जोनेन ने की। बैठक में दोनों देशों ने वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर आतंकवादी संगठनों से उत्पन्न खतरों तथा उग्रवाद, कट्टरपंथ, आतंकवाद के वित्त पोषण, तकनीकी दुरुपयोग और मादक पदार्थों की तस्करी जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। कोलंबिया के राष्ट्रपति चुनाव में वामपंथी उम्मीदवार इवान सेपेडा ने अपनी हार स्वीकार कर ली है। प्रारंभिक परिणामों के अनुसार उन्हें दक्षिणपंथी कारोबारी एबेलार्डो डेला एस्प्रियला ने बेहद कम अंतर से पराजित किया है। हार स्वीकार करते हुए श्री सेपेडा ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर चुनाव में हस्तक्षेप का आरोप लगाया। वहीं अंतिम आधिकारिक मतगणना की प्रक्रिया अभी जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना जताई है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा में तेज बारिश हो सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष। Prime Minister Narendra Modi chaired the 52nd meeting of Pragati, the ICT-enabled multimodal platform for proactive governance and timely implementation at Seva Tirth in New Delhi yesterday. During the meeting, Mr. Modi reviewed 4 major infrastructure projects in the road, power, industrial corridor and metro rail sectors across 4 states, involving an investment of around 30,000 crore rupees. The Prime Minister directed the concerned ministries and state governments to resolve bottlenecks in a mission mode and ensure close monitoring of project implementation. Mr. Modi also reviewed grievances related to cyber crime and digital arrest cases. Expressing concern over the growing misuse of digital platforms to defraud citizens, he called for intensified public awareness campaigns and directed stakeholders to strengthen systems for prevention, reporting, investigation and grievance redressal in cyber fraud cases. The PM's office informed that the meeting also reviewed the TB Mukt Bharat Abhiyan. The PM highlighted the importance of leveraging emerging technologies, including artificial intelligence, in the fight against tuberculosis. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has concluded a series of meetings with U.S. Trade Representative Ambassador Jamie Sungrier and his delegation in New Delhi yesterday. In a social media post, Mr. Goyal said they reviewed the progress of the ongoing India-U.S. trade discussions and explored avenues to further deepen economic partnership between both the countries. He also appreciated Ambassador Greer's leadership and the sustained efforts of both teams in advancing the discussions in a constructive and forward-looking manner. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar highlighted the importance of deepening India-South Korea ties amid a challenging global environment, saying that countries with shared values and mutual trust need to work together more closely. In his opening remarks during the meeting with South Korean Foreign Minister Cho Hyun in Seoul, he stressed the current international situation makes cooperation among trusted partners more important than ever. In West Bengal, rescue operations are in full swing after an under-construction godown collapsed, trapping workers beneath heavy iron debris near Taratala in Kolkata yesterday. 5 people were declared dead at the SSKM hospital and the injured are being treated there. Chief Minister Suvendu Adhikari visited the accident site and lauded the efforts of rescue personnel. He informed the media that Kolkata Metropolitan Authority would submit a report to him and he would brief the assembly today. As the house-to-house enumeration of special intensive revision of electoral rolls in Delhi to start from the 30th of this month, the Chief Electoral Officer of Delhi chaired a meeting with the representatives of political parties regarding SIR in New Delhi yesterday. In a statement, CEO's office said that the CEO informed them about the important activities to be undertaken.

2:10 हो चुके हैं और अब हो गए हैं 2:11:03। मैं हूँ आपके साथ एक बार फिर से अंजू लेकर आई हूँ कार्यक्रम रात सुरमई। रहिए मेरे साथ इस घंटे और हम सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। शुरुआत दिल तो पागल है से, जिसे गाया है उदित नारायण के साथ लता मंगेशकर ने।

मोहब्बत भी क्या चीज है कोई समझाए हमें, मोहब्बत भी क्या चीज है कोई समझाए हमें, जो मुस्कुराए वो तो जान ले जाए और जो रुलाए वो दिल में घर कर जाए।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।

बदल जाए ये दुनिया पर हम ना बदलेंगे, तेरे थे तेरे हैं और तेरे ही रहेंगे। खत्म हुई अब जमानों से चाहतों की तलाश, खत्म हुई अब जमानों से चाहतों की तलाश, अब तुम्हें ही चाहेंगे और उम्र भर चाहते रहेंगे।

ऐसी नजरों से न देखो कि मैं होश खो बैठूं, जो बात दिल में छुपी है वो सरेआम कह बैठूं। तुम्हारी इन आंखों में वो नशा है कि बिन पिए ही महफिल में बहक बैठूं।

पहली बार किसी की नजरों का ऐसा असर हुआ है कि ना होश है ना जमाने की कोई खबर है। जुबां खामोश है पर दिल दिल सब कुछ कह रहा है। ये प्यार का पहला नशा मेरी रूह में बह रहा है।

दोस्तों अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और आगे का सफर आपके साथ बढ़ाएंगी हमराही लेकर आएंगी वंदना चुग। मुझे अनुमति दीजिए अपना और अपने अपनों का खास ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए के 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ. जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि यह यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान पीयूष गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार प्रदान करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जिम्बाब्वे की सीनेट ने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके

नमस्कार, एफएम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है एफएम गोल्ड चैनल, और अब आप सुनेंगे गीत हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत अपनी दोस्त वंदना चुग के साथ।

दोस्तों, दौर भले ही चला गया है, लेकिन हमारे जहन में ये गीत आज भी जुड़े हुए हैं। ताजमहल फिल्म से ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की।

आज भी जुड़े हुए हैं। ताजमहल फिल्म से ये गीत आपने सुना मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में, साहिर लुधियानवी की रचना थी और रोशन का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे पेइंग गेस्ट फिल्म से आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में, मजरू सुल्तानपुरी की रचना है और एस डी बर्मन का संगीत।

दोस्तों जमाने की परवाह क्या करें, उसने तो कुछ ना कुछ कहना ही है, इसलिए आपके दुख सुख में जो साथ दे आप उसी के साथ खुश रहिए और अपनों का ख्याल भी।

दोस्तों, कुछ गीतों को तो लगता है कि साथ ही गुनगुनाते रहें और ये बजते रहें। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, जब ये गीत सुनने को मिलते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना। मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ में आपने ये गीत सुना पूर्णिमा फिल्म से। गीत को रचा था गुलजार ने और धुन बनाई थी कल्याण जी आनंद जी ने। अगला गीत छाया फिल्म से लता मंगेशकर और तलत महमूद का गाया हुआ आपको सुनवा रही हूँ। राजेंद्र कृष्ण की रचना है और सलील चौधरी का संगीत।

0: मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 26 जून तक टोल फ्री नंबर 1800117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या MyGov के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं या पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, आपने ट्यून किया है FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर और इस समय मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त वंदना चुग हमराही कार्यक्रम के अंतर्गत।

जब आप किसी को देख लें तो वो आपकी आंखों में बस ही जाता है। घराना फिल्म से ये गीत था, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ। शकील बनायूं की रचना थी और रवि का संगीत। अगला गीत ये रास्ते हैं प्यार के, इस फिल्म से आप सुनेंगे मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले का गाया हुआ। राजेंद्र कृष्ण के बोल हैं और रवि का संगीत।

अगला गीत आप सुनेंगे वो कौन थी, इस फिल्म से मनोज कुमार और हेलन पर फिल्माया गया है। इस फिल्म में हेलन बहुत ही सुंदर लग रही हैं। लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर का गाया हुआ, राजा मेहंदी अली खान की रचना है और मदन मोहन का संगीत।

जब अपनों का साथ मिल जाता है तो इंसान यही सोचता है कि उसका दामन छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। वैसे कहीं भी नहीं जाना चाहिए। अगला गीत प्यार को बयां करते कह रहा है।

0: चोरी चोरी, इस फिल्म से भी आपने गीत सुना लता मंगेशकर और मन्ना डे का गाया हुआ। शैलेंद्र की कलम से निकला गीत था और धुन तैयार की थी शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे दिल्ली का ठग फिल्म से। ये गीत किशोर कुमार और आशा भोंसले का गाया हुआ है। मजरू सुल्तानपुरी ने गीत को लिखा है और रवि ने संगीत दिया है। सुन लेते हैं किशोर कुमार का हंसी से भरा हुआ अंदाज से ये गीत।
1: कैट, कैट माने बिल्ली, आर ए टी रैट, रैट माने चूहा, अरे दिल।

G-O-A-T, goat. Goat माने बकरी, L-I-O-N, lion. Lion माने शेर, अरे दिल है तेरे पंजे में तो क्या हुआ?

0: न होगा कोई हमसा भी
1: लगे ने कभी अपने के मुंह देखा भी
0: तुम्हें एक नहीं जहां में हंसी न होगा कोई हमसा भी
1: तुमसे हो तो क्या हुआ
0: सी एटी कैट कैट माने

उम्मीद है आपको ये किशोर कुमार का हंसी भरा अंदाज ज़रूर पसंद आया होगा। और अब अगला गीत, दोस्तों जिसकी भी जिंदगी में बहुत अच्छा चल रहा हो तो उसकी जिंदगी में भला बहारें क्यों नहीं आएंगी। तो अब सुन लेते हैं ये गीत और आपको पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ।

दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि आप जान जाएंगे, तो आप जान गए होंगे कि ये फिल्म का नाम लिया था मैंने कि उसकी जिंदगी में बहार आ जाती है। तो आए दिन बहार के इस फिल्म से आपने गीत सुना लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में। अगला गीत सूरज फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले का गाया हुआ। बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी को अपनी बात समझा रहे होते हैं लेकिन नहीं समझ में आती, फिर आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं, छोड़ देते हैं उसे अपने वक्त पर, कोई बात नहीं। जब इसे या कहते हैं ना कि जब सयाना हो जाएगा तो खुद ही समझ जाएगा, तो इस गीत में भी ऐसा ही कुछ है।

दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमराही कार्यक्रम अब संपन्न होता है, लेकिन मैं कहीं नहीं जा रही हूँ क्योंकि मैं अगले कार्यक्रम के साथ भी तो जुड़ी हुई हूँ। और अब आपके लिए कुछ ही पलों बाद होंगे समाचार, आप सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की 4 प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयं सेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूंगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में एआई के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये 1 दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत के जमीनी स्तर के विकासात्मक आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोगात्मक मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। इस हादसे में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं। सेना, एनडीआरएफ, पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिनियान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। दोनों नेताओं के बीच टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हालिया परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी और लोगों के बीच संपर्क जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। जिम्बाब्वे की सीनेट ने एक संवैधानिक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत देश में राष्ट्रपति के प्रत्यक्ष चुनाव समाप्त किए जा सकते हैं, अगला चुनाव को टाला जा सकता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। सीनेट में इस विधेयक के पक्ष में 75 और विरोध में 4 मत पड़े। प्रस्ताव के अनुसार वर्ष 2028 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव को वर्ष 2030 तक स्थगित किया जाएगा और राष्ट्रपति एमरसन मनांगवा का कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना

दोस्तों, अरुणिमा कार्यक्रम में गीतों के साथ एक बार फिर से मैं जुड़ चुकी हूँ आपकी दोस्त वंदना चुग FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

भाभी फिल्म से अभी आपने गीत सुना, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर का गाया हुआ, राजेंद्र कृष्ण की रचना थी और चित्रगुप्त का संगीत। दोस्तों, पतंग की तरह ही हमारे विचार होते हैं, जो सकारात्मक हों तो ऊंचाइयों को छू लेते हैं, और हम तो यही चाहते हैं कि आप भी हमेशा ऊंचाइयों को छूते रहें।

मधुमती फिल्म से ये गीत आपने सुना मुकेश की आवाज में। शैलेंद्र ने गीत को लिखा था और धुन बनाई थी सलील चौधरी ने। अगला गीत झनक झनक पायल पाजी फिल्म से आपको सुनवा रही हूँ, लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का गाया हुआ। हसरत जयपुरी के बोल हैं और वसंत देसाई का संगीत।

मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं। आकाश

0: के संबद्ध प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 28 जून सुबह 11 बजे मन की बात।
1: दोस्तों, एफएम गोल्ड चैनल पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम अरुणिमा और गीतों के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ आपके साथ, आपकी दोस्त वंदना चुग।

मोहम्मद रफ़ी और साथियों की आवाज़ में आपने ये गीत सुना राम और श्याम फिल्म से। दोस्तों, बहुत समय हो जाए तो आप जब अपनों से मिलते हैं तो सबसे पहले क्या कहते हैं, आप बताइए सोचकर। यही कहते हैं ना, कैसे हैं, क्या हाल चाल हैं आपके।

किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज़ में आपने ये गीत सुना। मजरू सुल्तानपुरी की रचना थी और सचिन देव बर्मन का संगीत। दोस्तों, जब भी अपने दोस्त मिलते हैं तो अच्छा लगता है ना। और मौसम का अगर हाल बदल जाए तो कितना अच्छा हो, और फिर आपको उस मौसम में झूमना तो अच्छा लगेगा।

उजाला फिल्म से ये गीत आपने सुना, मन्ना डे और लता मंगेशकर का गाया हुआ। हसल जयपुरी ने गीत को रचा था और संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। अगला गीत आप सुनेंगे, लेकिन उससे पहले कहना पड़ेगा कि अगर आपके विचारों का तालमेल अपनों से बैठ जाए तो जिंदगी जीने का मज़ा और भी दोगुना हो जाता है।

हमारे दोस्त फिल्म का नाम तो जान ही गए होंगे, लेकिन फिर भी बता देती हूँ, गूंज उठी शहनाई फिल्म से ये गीत था, लता मंगेशकर की आवाज़ में। भरत व्यास ने गीत को रचा था और धुन बनाई थी वसंत देसाई ने। अगला गीत आप सुनेंगे अमरदीप फिल्म से, आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ। राजेंद्र कृष्ण की रचना है और चीतलकार रामचंद्र का संगीत।

ये सुदास और आशा भोंसले का गाया हुआ आपने गीत सुना छोटी सी बात फिल्म से। योगेश का गाया गीत था और सलील चौधरी का संगीत अगला गीत आपको सुनवा रही हूँ दिल देके देखो फिल्म से, आशा भोंसले और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और उषा खन्ना का संगीत।

दोस्तों, वक्त का पहिया कभी रुकता नहीं है, हमेशा चलता ही रहता है। और हम उस दायरे में रहकर अगर नियम बनाकर काम करते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं। अगला गीत कन्हैया फिल्म से मुकेश का गाया हुआ आपको सुनवा रही हूँ। शैलेंद्र ने गीत को रचा है और संगीत से संवारा है शंकर जयकिशन ने।

मुकेश के गाए इस गीत के साथ ही आज का अरुणिमा कार्यक्रम अब संपन्न होता है। कहीं मत जाइएगा, जुड़े रहिएगा FM गोल्ड चैनल पर।

0: प्रगति की 52वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की चार प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने परियोजनाओं को समय पर पूरा करने और लंबित मुद्दों के शीघ्र समाधान पर बल दिया। बैठक में टीबी मुक्त भारत अभियान की भी समीक्षा की गई। श्री मोदी ने टीबी उन्मूलन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग और जागरूकता अभियानों में एनसीसी कैडेटों तथा माय भारत स्वयंसेवकों की भागीदारी बढ़ाने का सुझाव दिया। प्रधानमंत्री ने साइबर अपराध और डिजिटल धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी एजेंसियों, बैंकों और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के बीच बेहतर समन्वय तथा जन जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्मेनिया के प्रधानमंत्री निकोल पाशिन्यान और उनकी पार्टी को हाल ही में हुए संसदीय चुनावों में जीत पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया की हाल की परिस्थितियों के बीच ईरान में फंसे भारतीय नागरिकों की निकासी में सहयोग के लिए आर्मेनिया का आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत दक्षिण कोरिया संबंधों को और मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया है। सोल में दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ बैठक में डॉ जयशंकर ने कहा कि वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में विश्वसनीय साझेदारों के बीच सहयोग पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है।
1: It is clearly our responsibility.
2: इस साझेदारी को आगे बढ़ाना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें सरकार के अलग अलग विभाग और देश की अर्थव्यवस्था के विभिन्न पहलू शामिल हैं, जिनके बीच तालमेल बिठाना बहुत आवश्यक है। मैं कहूँगा कि हमें भविष्य को ध्यान में रखते हुए एक आधुनिक साझेदारी की ओर बढ़ना चाहिए।
1: रिलेशनशिप इन अ मोर डिफिकल्ट वर्ल्ड।
0: केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज से ब्रिटेन की 3 दिन की आधिकारिक यात्रा पर जाएंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि ये यात्रा भारत और ब्रिटेन के बीच महत्वपूर्ण व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते तथा दोहरे अंशदान पर समझौते के लागू होने से पहले हो रही है। ये समझौते 15 जुलाई से लागू हो जाएंगे। यात्रा के दौरान श्री गोयल लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और वाणिज्य मंत्री पीटर काइल के साथ उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बैठक में व्यापार समझौते को लागू करने की तैयारियों पर चर्चा होगी। आज संविधान हत्या दिवस है। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लागू हुआ था। इस अवसर पर आपातकाल की विभीषिका और संविधान तथा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के महत्व को उजागर करने के लिए देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। ग्रामीण विकास विभाग आज नई दिल्ली में ग्रामीण विकास में AI के उपयोग पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि ये एक दिवसीय कार्यक्रम अत्याधुनिक तकनीकी नवाचारों को ग्रामीण भारत की जमीनी स्तर की विकास आवश्यकताओं के साथ जोड़ने के लिए एक सहयोग मंच के रूप में कार्य करेगा। केंद्रीय विद्यालयों के लिए 36वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2025-26 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस समारोह की अध्यक्षता करेंगे। श्री मेघवाल विजेता विद्यार्थियों और विद्यालयों को पुरस्कार वितरित करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह कल नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे। गृह मंत्रालय ने बताया कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो NCB द्वारा आयोजित इस बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों से संबंधित कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों की समीक्षा करने के लिए एक साथ आएंगे। इस अवसर पर श्री शाह मादक पदार्थ नियंत्रण के लिए वर्ष 2026-2029 के लिए दृष्टि पत्र भी जारी करेंगे। कोलकाता में भवन ढहने की घटना के संबंध में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने भवन के परियोजना पर्यवेक्षक सहित 3 आरोपियों को हिरासत में लिया है और मामले की जांच जारी है। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र झारखंड, महाराष्ट्र, ओडिशा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा में तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashvani, the news read by Ashish P. Abraham. Prime Minister Narendra Modi chaired

दोस्तों, भोर सुहानी कार्यक्रम में सभी का स्वागत करते हुए, गीतों से वातावरण को महकाते हुए सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आवाज़ तो आपने पहचान ही ली होगी। जी हाँ, मैं हूँ वंदना चुग।

सुषमा श्रेष्ठ और साथियों की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना द बर्निंग ट्रेन से। साहिल लुधियानवी की रचना थी और आर डी बर्मन का संगीत। दोस्तों, जो भी हमें मिलता है उसमें उसी की ही असीम कृपा होती है। इंसान तो गलतियों का पुतला है, लेकिन उसकी बख्शीश हमें सही राह और सुकून देती है।

उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ में लगान फिल्म से अभी आपने गीत सुना। जावेद अख्तर का गीत था और A.R. रहमान का संगीत। दोस्तों, जो कुछ है इस संसार में वो केवल सच पर ही है, और सच इस बात का प्रमाण है कि संसार में जो चीज़ें हैं वो यही रह जाएंगी।

हर किसी के दिल में ईश्वर का वास होता है, इसलिए हम किसी का भी मन ना दुखाएं और इसी में ही ईश्वर की मुस्कुराहट छिपी है और यही एक द्वार है जो हमें ईश्वर के पास पहुंचाता है।